0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आ किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: वहाँ।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
6: लंदन में तरसे हो? पाकिस्तान की अमुन वाली ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वे अफगान सदर में तांदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब दिनों वो सुबह समा वो वजीर अताउला तार है अफगान तालिबान रिजीम के दहशतगर्दी वे माइंड सेट में निकरण पवन अफगानिस्तान में दहशतगर्दन जहा था मौजूद आन अफगानिस्तान जहा घा मसला अस्क्रियत पसदाने सोच जो नतीजो आन अफगान अवाम के पैंजे मुस्तकबिल बाबत फैसलो करण जो हक मिलन घुर्जे। हुकूमत पीटीआई से गाल कद भी इनकार न किया पीटीआई गाल में लीडर की आजादी चाहे थी केतरा ही भेरा बुधा चुका आयो तो बानी की आजादी हुकूमत से न पर अदलिया से गंढियल है। कानून वाले वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़ पीटीआई के संजीदा गाल मशवरो डींदे है तो गाल बानी की आजादी से मशरूत करो अमल ठीक ना है यो चाहन था तो जलसन जुलूसन जरिए बानी के आजाद कराइन जो मुमकिन ना है। सुप्रीम कोर्ट बानी की चकास जो हुक्म दिनो हो जो थी वो हुक्म ते अमल में खोट आए तो अदालत के दिसणो आए जलसन जुलूसन से कुछ न थींदो।
7: ज्यादा लोग होंगे अभी इसमें दूसरी बात यह है कि कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई मुल्क के हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई तो पब्लिक का रिस्पांस आएगा और फिर जो है किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जहां पर अवामी मैंडेट से मुंतखिब शुदा हुकूमत आई है किसी के कंधों पर बेसाखियों पर नहीं आई अपने जोर बाजू से अवाम की ताकत से आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे या रीजन में या वफाक में अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है। यहां पर किसी गलती का सोचना नहीं है क्योंकि अवाम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे और आवाम जो है जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने अपने मैंडेट की हिफाजत की थी इस तरह अपनी हुकूमत की भी हिफाजत करेंगे।
6: कोविड वजर करण की कोशिश कई वही तवाम जो सख्त रद मिलो कंखे बसर लिकायण की जगह न मिली केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी खबरदार कर छो। सुहेल आफरीदी है तो केपी में गलती जो केर भी न सोचे केपी की मैंडेट की हिफाजत कदड़ आवाम पंजे हुकूमत की भी हिफाजत कंदो। तारीख में 4 अक्टूबर वो लॉन्गमार्च सब का वो लॉन्गमार्च साबित का धमकी मकसद तक न थी हटा सकते।

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भर के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की हो तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण की हिम्मत ही न है, 4 अक्टूबर से ब्लॉक मार्च न थो, मार्च छण हो तो 27 सितंबर से ही थी वे। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो केपी में दहशतगर्दी के कंट्रोल कर पीटीआई के वस में न है, डायलॉग हण से कुछ न थो, कम करण पवंद। वजीर आजम के सियासी मामलों वाले सलाहकार तहरीक इंसाफ के गाल दावत दई छी, राणा सनाउला है हर मसले जो हल हों तेकर लांग मार्च खत्म करो गाल तरफ अचो, गवर्नर राज एमरजेंसी समेत गाल ऑप्शन मौजूद है, 4 अक्टूबर से पीटीआई ताकत जो इस्तेमाल कयो तो कें आईन ऑप्शन तरफ वजणो पवंद। वजीर आजम मुखालिफ दुर्गवान के मुलाकात लाए खत लिखो है, भले बैरिस्टर गौर के भी गड वी अचे, मुलाकात थी वी। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली घटिताई, पेट्रोल 1 रुपयो 49 पैसा ऐं डीज़ल 2 रुपया 73 पैसा फी लीटर सस्तो, पेट्रोल जो नोग 387 रुपया 54 पैसा ऐं डीज़ल जो नोग 402 रुपया 24 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघ 30 सितंबर लाइ हूंदा। वडे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के गजल मनसूबे बाबत इजलास, नाड़े रथाबंदी वारन खातन के मनसूबे की तकनीकी ए मालियाती जांच जल्द मुकम्मल करण की हिदायत। मुराद अली शाह चयो तो मुस्तकिल के चैलेंजेस के मुंह देण लाए पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ो वे।
2: पाकिस्तान की तमाम सियासत एक टॉपिक पर डिस्कस कर रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का कयाम, और पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि आपको नए इंतजामी यूनिट्स पे जाना होगा। इस अमेंडमेंट 18वीं करनी के बाद वो शायद लोगों को, शायद यह कंफर्म बात है, वो लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो गया। 2026 में हम खड़े हैं और 2026 में मेरा आपका शहर, कि मैं नहीं कह रहा बैन अल अकवामी गरीबी कह रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा और चौथा पत्थर ही रहने वाला शहरों में शुमार होने लगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कयाम पर और कहीं पर सूबों के कयाम पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल बाद पाकिस्तान को हमारी बात आखिरकार समझ आ ही गई कि आपको ऑल्टरनेट पे जाना होगा, मौजूदा जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करना होगा। कहने को हम जमहूरी मुल्क हैं और इस जमहूरी मुल्क में जमहूर ही एम्पावर नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी जमहूरियत का।
3: जब ऑफिस ब्रेक में मिले ऑलपर्स टी क्रीमर की गाढ़ी मजेदार चाय, तो काम में वापस
2: लोगों को जमहूर को फैसिलिटेट करने में, सहूलत देने में ये निजाम अपना हिस्सा डाल सके, अपना किरदार अदा कर सके, मेरी दुआ।
1: अरणी तर में नाकाम थी वही आए नवा इंतजामी यूनिट हंटर आन, सिंध में मंडो निजाम में पंजाब में वन वुमेन शो हली रो है, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शेदी है तरणी तरमियम को लाभ न दई सके आए, नव निजाम यूनिट तरफ वजणो पवंद, हुकूमत निजाम वारो मॉडल हाँ तब्दील थियण घुर्जे। सिंध असेंबली के घरू मामलों वाले स्टडी कमेटी के चेयरपर्सन सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अकबराई यकीनी बनाने की हिदायत कर छी, फरियाल टालपुर की सदारत इजलास में सूबाई घरू वजीर जियाउल हसन लंजार बया शरीक, फरियाल टालपुर जदीद फॉरेंसिक लैब पुलिस प्रोसिक्यूशन अदालतों के तस्दीक थियल साइंसी सबूत फराहम कंदी, फॉरेंसिक लैब के जदीद असरायतों में तस्दीक थियल साइंसी इदारो बनाणो पवंद। सकरण में अगुणे पीए सैयद इमदाद मोहम्मद शाह की 22वीं वर्सी ते सिंध यूनाइटेड पार्टी जो वद सिंध जलसो, सैयद इमदाद शाह खिताब कंदे जड़ी नमूने से कानून में तरमीम आंदियों पी वन उठन ही न थियं, उन्होंने अग में एतराज हुआ तो हाँ बन सिंध असेंबली में जो बिल पास किया वो धोखो है, सिंध के विरण मुल्क के विरण हों, बीएनपी अगवान अब्दुल रऊफ मेघल ऐं ॿियनि चयो त असांखे हक़नि लाइ गज़ल जिदोजहद करणी पवंदी। कराची जे इलाइक़े गुलबाई चौक वटि हथियारबंदनि जी फायरिंग में ॿ भाइर क़तल, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। फायरिंग में करीम ऐं संदसि भाउ अज़ीम थॾे ते मारिजी विया। जावेद वलंत शहज़ाद ज़ख़्मी थी पियो। मक़तूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी बुलंद वसीर अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस जो चवणु आहे त वाकिए जो कारण मालूम न थी सघियो आहे। जांच शुरू कई वई आहे। रेमिया खान में ॿिनि धारधार पुलिस मुक़ाबलनि में टे ॾुआरी मारिजी विया। सिटी सी डिवीज़न एयरपोर्ट थाणे जी हद में पुलिस जो ॾुआरियुनि सां मुक़ाबलो थियो। फायरिंग जी ॾे वठि में टे ॾुआरी मारिजी विया, ॿ फरार थी विया। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां गैर क़ानूनी हथियार ऐं मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस जो चवणु आहे त मारिजी वियल ॾुआरी संगीन ॾोहनि में मुलवस हुआ। फरार थी वियल जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन जारी आहे।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN
5: न्यूज़। मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अखिन वहाया तो लय बे अख्तियार गोढ़ा, अखिन वहाया तो लय बे अख्तियार गोढ़ा, जीण जी हौसले लय छड़िया बचार गोढ़ा। धरती सूंह जो तू मरकज बिलाल आहीं, धरती सूंह जो तू मरकज बिलाल आहीं, गुलड़न जी माक वांगुर बूंदू बहार गोढ़ा। अखिन वहाया तो लय बे अख्तियार गोढ़ा, जीण जी हौसले लय छड़िया बचार गोढ़ा।

अरबा जो ॾींहुं सेप्टेम्बर महीने जी 30 तारीख़ आहे 2026 ईस्वी सन ऐं रबीसानी महीने जी ख़ैर सां 17 तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन। साईं मुंहिंजा, अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त असांजी सिंध सुहारी मालामाल आहे। दुनिया जी हर नेमत असांजी सिंधड़ी में मौजूदु आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त जेके सिंध सुहारी जा तमामु सुहिणा ऐं कुशादा रोड रस्ता ऐं सिंध सुहारी में जबलनि जूं कतारूं ऐं वणंदड़ जबल कारूंजर हुजे, तोड़े बलोचिस्तान जा जबल हुजनि तमामु सुहिणा ऐं वणंदड़ कतारुनि में, के पंहिंजो सावक खां खाली त के सावक सां भरियल गुलनि फुलनि सां, ऐं सिंध में कोयलो, सिंध में तेल, सिंध में सोन ऐं सिंध में तमामु घणा अहिड़ा फसल शायदि किथे ॿिए हंधि न हुजनि। तमामु बहितरीन क़िस्म जा अलाह साईं जूं नेमतूं जिन में समायल आहिनि, अहिड़ा वण जिन में खाइण जो फ्रूट, जंहिंमें कुझु अहिड़े हिसाब सां खाऊं जंहिंमें खोराक बि, त उन में असांजी हिकमत बि मौजूदु हूंदी आहे। तमामु घणियूं सब्जियूं, अहिड़ा फसल, बहरहाल असांजी सिंध तमामु सोन जहिड़ी आहे, जन्नत जहिड़ी आहे। असांजी सिंध सुहिणी ऐं पूरी पंहिंजे हिकमत सां, पंहिंजे नेमतनि सां मालामाल आहे, ऐं असांजी सिंधड़ी जन्नत जहिड़ी आहे।

साईं जावा के ॿुधाईंदो हलां त अॼु जेको ॾींहुं आहे उहो 30 सेप्टेम्बर आहे, सुभाणे 1 अक्टूबर आहे, ऐं 1 अक्टूबर अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त बुज़ुर्गनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ऐं बुज़ुर्ग माण्हू असांजे समाज जा उहे फर्द आहिनि जिन पंहिंजी ज़िंदगी जे समूरनि ॾींहनि खे पंहिंजनि जे लाइ वक़फ़ करे जुस्तजो कई ऐं नौजवाननि लाइ रोशन मुस्तक़बिल लाइ हर राह तां तकलीफ़ुनि खे परे कयो। कंहिं ॾाहे जो कौल आहे त हिकु बुज़ुर्ग सां हिकु कलाक जी कचहरी 100 किताबनि जे पढ़ण खां वधीक आहे। उन करे 1 अक्टूबर खे बुज़ुर्गनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाइण जो फ़ैसिलो गॾियल क़ौमुनि इदारे UNO जे जनरल असेंबली तारीख़ 14 डिसंबर 1990 ते 1 अक्टूबर खे बुज़ुर्गनि माण्हुनि जे जनरल असेंबली तारीख़ 14 डिसंबर 1990 ते 1 अक्टूबर खे बुज़ुर्गनि

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं।

0: रिजल्ट हासिल करने लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: Yeah!

जी साईं, साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां सवाल रखियो आहे ऐं तव्हांखे उमेद त इंतज़ार हूंदो ओसियड़ो हूंदो त असांजो जेको सवाल कहिड़ो आहे, असांजो अॼु जो सवाल आहे त उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वण नाहे थींदो न का वल थींदी आहे। जी हा, तमामु आसान सवाल आहे त उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वण या वल नाहे थींदी। ऐं असां दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं, जेकॾहिं अव्हांखे सवाल जो सही जवाबु अचे पियो त असांजे SMS ज़रिए सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। SMS करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, उहो इहो आहे त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते LRK यानी लाड़काना LRK लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 8881 ते। ऐं असांजो GFM88 ID आहे फेसबुक जी, ऐं असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां हुन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं जेके दोस्त फोन कॉल ते ईंदा आहिनि ऐं रेग्यूलर कॉलर आहिनि त असांजी आन हूंदी मोबाइल 10 बजे खां बाद में स्टूडियो में, तव्हां कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु नोट कराए सघो था। असांजो नंबर तमामु आसान आहे 0332132288। ऐं साईं मुंहिंजा ॿियो अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु के हिन दौर में जेको ॻाल्हि घणी हिकिड़ो हले पई या चर्चो हले पियो पेट्रोल जो, त पेट्रोल जेको ॾींहों ॾींहुं महांगो थींदो वञे पियो, त असांजे गवर्नमेंट जी पॉलिसी में वज़ीर आज़म जे इन रिलीफ में अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांखे रिलीफ तमामु सुठो मिलियो आहे। जेको अव्हां खे यकीननि हिन वक़्तु जेको पेट्रोल पंपनि ते पैकेज ॾिनो वियो आहे त 100 रुपियो फी लीटर ते असांखे रियायत आहे। ऐं उन जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, तव्हांखे हर पेट्रोल पंप ते उन जो आसान तरीक़ो बि जेको वॾो बैनर लॻल आहे, पेना फ्लेक्स लॻल आहे, उहो बि तव्हांखे उतां बि सॼी मालूमात मिली वेंदी। पर मां बि अव्हांखे ज़रूर मालूमात ॾींदुसि त जेके दोस्त पेट्रोल बाबति पंहिंजो मालूमात वठणु चाहिनि था त गौर सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। त असल में जेकॾहिं तव्हां मोबाइल में वेंदव, SMS में वेंदव, उन जे राइट ऑप्शन में वेंदव त REG वॾी बेसीअ में तव्हां REG लिखंदव ऐं उन खां बाद में NIC पंहिंजो स्पेस ॾींदव। स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी जेका NIC आहे उन जा तव्हां डिजिट हणंदव, उन खां बाद में तव्हां वरी स्पेस ॾींदव, तव्हां वरी S लिखंदव, यानी असांजो जेको सूबो सिंध आहे उन जो पहिरियों अख़र S आहे। S लिखी करे तव्हां वरी स्पेस ॾींदव ऐं गाॾी जो जेको नंबर आहे त वरी तव्हां उहो लिखंदव, उन खां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई वरी तव्हां तारीख़ लिखंदव जंहिं तारीख़ ते गाॾी रजिस्टर थी आहे ऐं तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जेकर तव्हांजो दुरुस्त लिखिजी आयो, तव्हांजी मैसेज ओके थी वई, त पोइ तव्हां वरी लिखंदव टोक यानी TOK लिखी करे तव्हां सेंड कंदव त तव्हांखे वधीक ऑप्शन मिली वेंदो त तव्हां पेट्रोल जे अहल आहियो, यानी तव्हांखे 500 रुपए जो पेट्रोल मिलंदो ऐं 500 रुपए जो पेट्रोल वरी 2 हफ़्ते मिलंदो। वरी जॾहिं तव्हांजो उहो 2 हफ़्ता पूरा थी वेंदा त वरी जेको आहे सो तव्हांखे ॿीहर TOK लिखणो आहे, यानी तव्हां ॿीहर टोक लिखंदव वरी सेंड कंदव त तव्हांखे 2 हफ़्तनि जो वरी तव्हांखे पेट्रोल मिलंदो, पर हफ़्ते जो अलॻि मिलंदो। जी हा साईं, मुंहिंजा अव्हांखे मालूमात ज़रूर मिली वेंदी। वरी अव्हांखे नोट करायां थो, जेके दोस्त असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया त वज़ीर आज़म जे प्रोग्राम तहत जेको असांखे रिलीफ मिलियो आहे पेट्रोल जे हवाले सां त महांगो पेट्रोल, उन जे हवाले सां तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, REG माना रजिस्टर्ड, REG वॾी बेसी में स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी NIC हणंदव, वरी स्पेस ॾेई तव्हां AS लिखंदव यानी सिंध सूबो आहे असांजो, उन खां बाद में AS खां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां गाॾी जो नंबर लिखंदव, रजिस्टर्ड नंबर जेको आहे गाॾीअ जो, उन खां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां रजिस्टर्ड तारीख़ तव्हां लिखंदव, सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, 9771 ते तव्हां सेंड कंदव। जेकर तव्हांजो SMS दुरुस्त आयो त पोइ तव्हां टोक सेंड कंदव, टोक यानी TOK सेंड कंदव, तव्हांजो बकाया मैसेज अची वेंदो त तव्हां रजिस्टर आयो ऐं तव्हांजो टोकन नंबर तव्हांजो निकिरी ईंदो ऐं तव्हां उन कंहिं न कंहिं पेट्रोल पंप तां तव्हां पंहिंजो पेट्रोल विझाए सघो था। साईं, मुंहिंजे हिन पेट्रोल महांगो आहे ऐं महांगे पेट्रोल करे महबूब सां मिलणु अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे।

जी समय असांजे अॼोके प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां खां असां जेको सवाल कयो आहे तमामु आसान सवाल आहे त अवां ॿुधाईंदव उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वण नाहे थींदो न का हुन जी वल थींदी आहे। जी हा, असांजो सवाल आहे त उहो कहिड़ो मेवो आहे जंहिंजो वण न थींदो आहे ऐं न का वल थींदी आहे। अवां खे ॿुधाइणो आहे असांखे SMS ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं कॉल ज़रिए। असांजो नंबर आहे 0333-2-1-3-2-8 ऐं साईं मुंहिंजा अवां कलाम बि ॿुधंदा रहो ऐं उनखां बाद में हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 बजे ताईं, कॾहिं बि न वञिजो, असां सां गॾु गॾु ज़रूरु हुजो।

0: पाकिस्तान की
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: आप सुन रहे थे
1: पाकिस्तान जी अमन वारी को।
2: आपने कभी सोचा है
1: मावारो वजीर अताउला तार चयो आहे त अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूद आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसदाणे सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। हुकूमत पीटीआई सां ॻाल्हियुनि खां कॾहिं बि इनकार न आहे कयो। पीटीआई ॻाल्हियुनि में लीडर जी आज़ादी चाहे थी। केतिरा ई भेरा ॿुधाए चुका आहियूं त बानी जी आज़ादी हुकूमत सां न पर अदलिया सां ॻंढियल आहे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ पीटीआई खे संजीदा ॻाल्हियुनि जो मशवरो ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि खे बानी जी आज़ादी सां मशरूत करण वारो अमल ठीक न आहे। इहो चाहिनि था त जलसनि जुलूसनि ज़रिए बानी खे आज़ाद कराइनि, जेको मुमकिन न आहे। सुप्रीम कोर्ट बानी जी चकास जो हुकुम ॾिनो हो, जेको थी वियो। हुकुम ते अमल में खोट आहे त अदालत खे ॾिसणो आहे। जलसनि जुलूसनि सां कुझु न थींदो।
3: ज्यादा लोग होंगे। अभी इसमें दूसरी बात यह है कि कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई, मुल्क के हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की गई, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स आएगा और फिर जो है किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जहां पर अवामी मैंडेट से मुंतखब शुदा हुकूमत आई है, किसी के कंधों पर बैसाखियों पर नहीं आई, अपने जोरे बाजू से अवाम की ताकत से आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे या रीजन में या वफाक में अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है। यहां पर किसी गलती का सोचना भी नहीं, क्योंकि अवाम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे और आवाम जो है जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने अपने मैंडेट की हिफाजत की थी, इस तरह अपनी हुकूमत की भी हिफाजत करेंगे।
1: कोविड वेझर करण की कोशिश कई वही तवाम जो सख्त रद अमल ईंदो ऐं कंहिंखे बसर लिकाइण जी जॻह न मिलंदी। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी ख़बरदार करे छॾियो। सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त केपी में ग़लती जो केर बि न सोचे। केपी जी मैंडेट जी हिफ़ाज़त कंदड़ आवाम पंहिंजे हुकूमत जी बि हिफ़ाज़त कंदो। तारीख़ में 4 अक्टूबर वारो लांगमार सभ खां वॾो लांगमार साबित थींदो। का बि धमकी मक़सद तां पोइते नथी हटाए सघजे।

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: जी हा, समय नवां ही असो पुरो मोहम्मद हो जो कुत्ते के हवाले से हो, कुत्ते के चक के हवाले से हो, अवं तई असो गवर्नमेंट के हवाले से मालूमत हुई। तो अस भी अवं के बुझाइंदी तो असाज इलाक में, सिंध के इलाक में या बिन इलाक में कुत्तन जो आजार हो एतरो वधी वो है जो हर जिले अस्पताल में कुत्ते के चक वारा जो केस इंदा रहन था। पर काफ़ी जगह ते अड़े बचाव वालों जो वैक्सीन उत न भी मिली हुन, पर शहर के भेट में बहराड़ी में जो रोलू कुत्ता तमाम घना थियन था, अड़ा वाकया भी उत पेश अचन था। पर जडे जिले अस्पतालों जो सो अड़न शयन को महरूम हुजन, बहराड़ी के बुनियादी सेहत मर्कजन जो कड़ो हाल हों, सहमजा इन में इंतहाई गणती जोगी सूरत हाल होंगी है, दुख भी थन्द है। पर असाज गवर्नमेंट जो कोशिशूं हूंदियूं आहिनि त असां वटि उहे वैक्सीनूं जेके कुते जे चक हूंदियूं आहिनि उहे घणी खां घणी हुजनि, पर इतफ़ाक़ आहे किथे न बि हूंदियूं आहिनि। बहरहाल वैक्सीन जेकॾहिं नथी मिले त तव्हां 1122 ते तव्हां कॉल करे बि पंहिंजी मालूमात वठी सघो था त तव्हांखे वैक्सीन किथे मिली सघे थी। ऐं अहिड़ा काफ़ी पंहिंजो केस अचनि था जिते माण्हूअ खे ॾाढो नुक़सान थिए थो, ऐं कोशिश कयूं त असां जेके आहिनि इहे पंहिंजो ॿारनि खे पाण जे इन इलाइक़नि खां अहिड़ा जेके छिता कुता हूंदा आहिनि उन खां बि पाण बचूं, ऐं पंहिंजे ॿारनि खां पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे बि बचायूं। त जेकॾहिं अहिड़ो को छितो कुतो आहे त असां पंहिंजे वेझे कंहिं इदारे खे यानी 1122 खे कॉल करे बि असां पंहिंजो ॿुधायूं त असांजे इलाइक़े में ही आज़ार आहे जेके छितो कुतो थी चुको आहे, त उहो हुनखे पाण कॾहिं न कॾहिं लिकाए छॾींदा, गुम करे छॾींदा। अहिड़े हिसाब सां असां कोशिश कयूं त जेके छिता कुता थियनि था या जेके रोलू कुता हूंदा आहिनि अक्सर, त उन खां पाण बचूं। पर वैक्सीन जेका आहे उहा हर अस्पताल में थींदी आहे, बिल्कुलु हूंदी आहे, तव्हां उते वञी करे तव्हां वैक्सीन पंहिंजी लॻाराए सघो था। ऐं जेको आहे सो पंहिंजे उन छिते कुते जे चक जेको आहे सो खां तव्हां पाण खे बचाए सघो था। ऐं साईं जा असां अव्हां खे इहा बि मालूमात ॾींदासीं त जेको कुते जे बचाव जो आलमी ॾींहुं जेको कुते जे चक खां हो उहो 28 सेप्टेम्बर ते मल्हायो वेंदो आहे। हालांकि अॼु 30 सेप्टेम्बर आहे ऐं 28 सेप्टेम्बर गुज़री चुको आहे। अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त कुतनि जे चक खां बचाव जो आलमी ॾींहुं हर साल 28 सेप्टेम्बर ते गॾियल क़ौमनि जे सिहत जे आलमी इदारे सहकार सां सन 2007 खां मल्हायो पियो वञे, जंहिंजे मल्हाइण जो मक़सदु कुतनि जी चक पाइण वारे मर्ज़ खां माण्हुनि खे ॼाण ॾियण ऐं उन जे बचाव जो शऊर पैदा करणु आहे। त इहा हक़ीक़त आहे त असां उन्हनि जो शऊर पैदा कयूं माण्हुनि में ऐं कोशिश कनि त अहिड़ा जेके रोलू कुता आहिनि, अहिड़ा जेके छिता कुता आहिनि, त असां उन खां पंहिंजे ॿारनि खे, पाण खे, पंहिंजे वॾड़नि खे बचायूं। पर असांजो माल मता बि महफ़ूज़ हुजे हुन छितनि कुतनि खां, तमामु उन में ज़हरीलो जेको आहे मादो हूंदो आहे, उन जी चक पाइण सां जेकॾहिं कंहिं मेंहिं खे, कंहिं गऊअ खे, कंहिं ॿकरीअ खे, जेको आहे कंहिं बि पखीअ खे जेकॾहिं उहो छितो कुतो चक पाए थो त उहो बि छितो थी वञे थो। त कोशिशि कयूं असां जेकॾहिं कुते जो चक पइजी वञे थो त उनखे असां वैक्सीन हणायूं, ऐं वैक्सीन सां बचाव थी सघे थो। उन जा डोज़ हूंदा आहिनि, 3 डोज़ हूंदा आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ ॾींहनि ते पोइ बाद में लॻाया वेंदा आहिनि। त कोशिशि कयूं त अहिड़े मोज़ी मर्ज़ खां बचूं ऐं असां जेको आहे सो अहिड़ी आगाही ॿियनि ताईं बि पहुचायूं त जीअं अहिड़े आज़ार खां माण्हू पाण बची सघे।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो। अभी बुधो प्या जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजी पुॼणती हयाती बखरियन सां अवां सां मुलाकात ज़रूर थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खे ॾींदा इज़त अलाह निगहबान।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: हथियारत के अभियान KPK जे लाइके मीर अली में फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मार्ज विया। टांक में पटवार खाने के टारगेट करण जी भी कोशिश नाकाम। पंहिंजे ई बम फाटण सबब हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो। बलूचिस्तान जे सोराब जिले में बि फोर्सेज जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां KPK बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। मीरू खान जे सजावल जुण जो थाने जी हद में मुबैना पुलिस मुकाबलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिक ॾुहार जी मारिजी वियो। पुलिस मूजिब लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾुहारिन सां मुकाबलो थियो। मुकाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे। मेहड़ में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग। ॿ ॼणा ॻोठाणा ज़ख़्मी। भुटे मोहला में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो। गोलियूं लॻण सबब ॻोठ रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार राजा खोसो ज़ख़्मी थिया। कणती वारी हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कया विया। पनो आकिल में सगावती तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ॻोठ अलायार टावरीअ में टावरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में सगावती तकरार तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबब औरतुनि समेत ॿिन्ही धुरियुनि जा 15 ॼणा ज़ख़्मी थिया। कड़ो गंवर में गोरी केनाल में ॿुॾी वियल 7 वरनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो। वारसनि जो धरणो। गोलाड़ जी भरिसां ॻोठ अहमद खोसो वटि नींगर शहज़ादपुर बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियो हो। इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे। इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। नवाब शाह जे मोहम्मदी टाउन जे रहवासियुनि जो मुबैना तौर अगवा थियल नींगरीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। जानी बोर्ड पंहिंजे वालिद जमीर ज़ाल शबाना ऐं ॿियनि माइटनि सां गॾिजी प्रेस क्लब वॾो एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि हथियारबंदनि 11 सालनि जी नियाणी रीमा खे अगवा करे विया आहिनि। नींगरीअ खे बाज़ियाब करायो वञे। हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टकर। नौजवान फोत। हिकु ॼणो ज़ख़्मी। रसूलाबाद स्टाफ वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फोत ऐं एसाक ज़ख़्मी थियो।
6: सोलर ऐं बैटरी
7: कुझु चीज़ पे हम बिना देखे बिना सोचे भरोसा करते हैं। वो भरोसा जो आँखों से ओझला है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जिनके बनाए पाइप्स आपको नजर तो नहीं आते पर भरोसा पूरा जगाते हैं। कहीं एतमाद की फरवानी जगाते हैं, कहीं मईशत का पहिया चलाते हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, बुनियाद एतमाद की।
8: पाकिस्तान में 48% लड़कियां तालीम के हक से महरूम हैं।
9: इस यौम आज़ादी अहद करते हैं लड़कियों की 100% तालीम का, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती हैं तभी काम।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
10: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
3: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: छंछर आचर ते आयल मरीजन जो चेकअप फ्री में करवाइंदो आहे। एड्रेस हैदराबाद होम्योपैथिक क्लिनिक नस्त पुराणो यूटिलिटी स्टोर दादू रोड।

ओके जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के थाउजेंड से यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों और कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों को बताएंगे क्या तरीकेकार होने वाले हैं प्रोग्राम में शामिल होने के। लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चले कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात करें तो मेरा आप लोगों से सवाल होगा कि भाई आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है। हाँ जी, स्टॉप नहीं लगता उसको। आप मुझे बताइए इसका जवाब। अगर आप जानते हो शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। मैंने अभी देखा कितने सारे लोग जिन्होंने कमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया। तो भाई पोस्ट को लाइक भी किया करें और साथ में शेयर भी किया करें, ये दोनों काम बल्कि ये तीनों काम आप लोगों ने करने होते हैं। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए। अच्छा, उनका अलावा अगर तुम्हारा असने प्रोग्राम जो हिस्सो बनजो पाया तो लाजमी असांखे जेको ना पांजे हुजन जो सबूत दे छरींदा कर, लाजमी इहो मुखे लाजमी बुधाईंदा कयो तो तुम्हारा सब जेको आहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे रहा आयो। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही आहे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तुम्हारा पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने लाइक छा कंदा इहो भी तव्हांखे बुधाईंदी हला। बिल्कुल जी, तव्हांखे नंबर बुधाईंदा आहियूं प्रोग्राम जे अंदर, ऐं नंबर तव्हांखे इन लाइ ॿुधायो वेंदो आहे जी तव्हांजे लाइ आसानी थी सघे ऐं तव्हांखे इन चीज़ जी टेंशन न हुजे त बाबा हाणे असां किथां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे शहरनि में अवेलेबल थी सघे थी। उन्हनि जे लाइ बसि तव्हांखे नंबर से राबितो करणो आहे, नंबर जेको तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, नंबर से तव्हां लाज़मी राबितो करे वठंदा कयो, कॉल कंदा कयो या वरी हिकिड़ो नंढड़ो मैसेज छॾे ॾींदा कयो त भाउ अदा हिन फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन मिलनि था, महिरबानी कयो अवेलेबल कराए छॾियो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। ओके जी, सो अगर तव्हां नंबर से राबितो करण चाहियो था त नंबर आहिनि 0332734309 3032384309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03125025907 5025907. ही तारिक भाई जो नंबर आहे, तारिक भाई जेको आहे न हर वक़्त तव्हांजे लाइ वेठो आहे त कंहिंमहिल था असांजे लिसनर्स असांखे कॉल कनि त असां उन्हनि खे जेको आहे न उन्हनि जे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराए छॾियूं। त अगरि तव्हां बि फोन कंदा त तव्हांजी फोन रिसीव थींदी, तव्हांखे रिस्पॉन्स मिलंदो, ऐं तव्हां अगरि उन्हनि खां कोई बि मालूमात वठी सघो था त बाबा फलाणी जॻह ते नथी मिले त असां किथां वञी वठी सघूं था, त हू सॼो तव्हांखे डिटेल समय तव्हांखे ॿुधाईंदा त तव्हां किथां किथां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे परचेज करे सघो था। सो नंबर से रातो लाज़मी कजो ऐं पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾियो, पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जेका मतिलब जंहिंजो पेट भरियल आहे पोइ बि उहो खाईंदी रहंदी आहे। हांजी, और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर आपका मैसेज है जी। अच्छा, आपके फीडबैक्स आ चुके हैं। अखलाक भाई सबसे पहले हमारी पोस्ट पर मौजूद है, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। और फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं कब्र सा कुछ त गालाए रही आ, हवा मिट्टी के जगाए रही आ। फहीम शेख भाई वालेकुम अस्सलाम इन मौला इस्लाम अदर कहते अदा छाल आ खुश आई सफा चाक स्लेट कलम मस्त हाउ सफा मजे में ता बुधायो। और नवीद खान हमें सुन रहे हैं, नवीद खान आपका बहुत शुक्रिया। जागू बुकटी से आप हमें शायद ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और जीशान हमें सुन रहे हैं, कहते लाड़काना से आपको सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जीशान, आपको भी वेलकम हो गया। और आप सबको जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इजिली मिल जाएंगे तो आप जाइएगा और जरा परचेज कीजिएगा। अलीशा हमें सुन रही है, अलीशा कहती है अच्छा लिखती है कि उन्हें जो नाज है खुद पर नहीं वो है बेवजह। अलीशा क्वीन कि जिसको हमने चाहा हो वो खुद को आम क्यों समझे, ओ या गाल।
अच्छा फरवा हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी गुड, यस आप बताएं कैसी हैं। जवार सफदर अली शाह हमारे साथ कहते माशाल्लाह आपकी आवाज अभी तक वैसी ही है, माशाल्लाह अल्लाह सही आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जवार आप हमारे साथ है। कहते काफी टाइम पहले आप हमारी बहुत से भी बहुत ज्यादा फेवरेट होती थी, वैसे माशाल्लाह अभी है, मेरे को लगा अब नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है, काफी दिनों के बाद प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपको वेलकम कहते हैं। अली रजा लगारी हमारे साथ है, गोठ जाम खान लगारी से अली रजा लगारी सिस्टर वालेकुम असलाम, मां ठिकाने तां बुधायो, कहते शो तवां जो तमाम नाइस आहे, आई सॉन्ग सोहणो आ सोहणो गुलाब तू बाय नादर लाशारी, आई सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आजम लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारी, सिस्टर सिद्रा, ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, जैसे सॉन्ग में नादर लाशारी बोल रहा है, जियो करे सिस्टर थैंक्स, बिल्कुल जियो गानो तो लाजमी बुधंदी बुधंदी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केतरो कमाल है, जो असने सोने भा अली रजा लगारी के मिलो है, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये इस्तेमाल कंदा रहो, तवा भी सोना सोना थींदा रहो। अच्छा तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई कहते नाइस यो, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, और हमारे साथ फरवा लिखते हैं कि आप ही अर्ज किया है, सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उस वक्त होती है जब हम किसी को हद से ज्यादा इज्जत देते हैं और वो लोग उसे हमारी मजबूरी समझकर हमें बेवकूफ समझते हैं। हाँ सही आयता पानी जगह थे। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते ये लिंक है, अगर हो सके तो प्ले करना, ओके मां डिसां थी। और उनके अलावा कामरान अली हमारे साथ लिखते हैं कि जब इंसान अपने पसंदीदा शख्स से बात करने के लिए तरस जाता है तो तब महसूस होता है कि उस फकीर का दुख महसूस होता है जो सारा दिन मांगता है और रात को खाली हाथ घर लौट जाता है। ओके जी ओके। सफदर लिखते हैं कि सिडो वैसे काम बढ़ गया है, हम आपको भूले नहीं।

0: तारिक भाई और मोहम्मद सलमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआजी, वेलकम टू यू प्यारे भाई आहत जरवार में टॉपिक पप्पो ओके ओके समझने के लिए जमाने लगेंगे। और सफदर लिखते हैं कि आप नुसरत का सॉन्ग जरूर सुनाना, आज भी ऑफिस से सुन रहा हूँ आपको। जी जी मैं बिल्कुल आपको नुसरत का गाना अच्छा सा सुना दूंगी। और आहत भाई कहते हैं हम भी आ गए, बहुत शुक्रिया आहत भाई। और अलीशा आपने टॉपिक का जवाब दिया है ओके हो गया जी। और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके हो गया जी। और फहीम भाई कहते हैं यहाँ के टॉपिक का ये जवाब है। ओके जी ओके थैंक यू वेरी मच फहीम भाई, आपको भी खुश आमदी। चाचा खालिद कहते हैं कि मैं आपके शो का हिस्सा हूँ, इससे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से मुझे झंडो मरी वाले जुदा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे झंडो मरी वाले आपको क्यों जुदा करेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम से, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इस तरह इजाफा लाएगी कि भाई दुनिया देखती रह जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और तारिक भाई कहते हैं तारिक भाई इज वॉचिंग अदी सिद्रा, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्यारे तारिक भाई भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए, तो मैं आपको तारिक भाई का नंबर बताती हूँ ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसके ऊपर आप राबता करके तारिक भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपने कहाँ से परचेज करनी है, या फिर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो तारिक भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे तारिक भाई हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उन्हें मसला बताइए कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए जी बाकी बातें हम जो है वो बाद में आकर करते हैं, यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: इट्स 1:30 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, कुदरती जिजन सा तैयार कर जेकाडी कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
4: क्लिनिक बंद रहंदी।
5: मोबाइल नंबर 03432512177।
6: अदी दसु तडे मुजी नोह के औलादी को नती थिए।
7: भेण डॉक्टर सुमेरा बिरोही का पेंजी नियाणी जो इलाज करायो सी, हाने मुजी नियाणी औलाद वारी आहे।
4: खुशखबरी और तुंजे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर सुमेरा बिरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़कानो माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी सीजर ऑपरेशन औरतुन में अंडेदानी बच्चेदानी रसोलिन जो इलाज ऑपरेशन बेओलादी जो खास इलाज टेस्टों हमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर बेन बीमारिन जो इलाज औरतुन में गैर जरूरी पानी खून जो इलाज याद रखंदा गरीब मरीजन के खास रियायत डिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा और तुंजे बीमारिन जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर VIP रोड लाड़कानो।
8: टाइम रोजाना शाम जो 5 बजे का रात जो 8 बजे ताई अचर सुबह जो 11 बजे का मंझन जो 3 बजे ताई।
4: वधिक मालूमात जे लाए मोबाइल नंबर 03333071553।
2: GFM 88
0: सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
9: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मांदली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत प्यारा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलनी चाहिए तो वो आपको बताते हैं नंबर जिसके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहेंगे। अच्छा, उन खां अलावा अगर तासानी प्रोग्राम जो हिस्सो थियो पया तो तासानी फेसबुक पोस्ट के लाइक एंड शेयर कना कयो। इन खां अलावा कमेंट करे मुखे उधा ते तवासा सगड मौजूद आहे। अन जेकी मानो असानी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कना है ना तो असा फायदो ही पहुंचंदो आहे। त खोड सारी मानन के सा बुधाय सगना त बाबा साईं तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तवा जी खूबसूरती जलाए भी डाडो जरूरी आहे। बिल्कुल जी, अगर खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजर अंदाज कर दिया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी नजर आए, नरम और फ्रेश महसूस हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरत नजर आना काफी नहीं होता बल्कि आपकी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अपनी ब्यूटी के रूटीन के अंदर आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो ये चीज तो वाजे हो जाएगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके स्किन को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगी बल्कि आपके चेहरे पर जितनी भी ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि रोज ना अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे कि वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले तैयार करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिसे आप लगाएं तो आप खूबसूरत तो हो जाएं लेकिन आपके चेहरे की हिफाजत जो है ना वो बाकायदा से होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ये होगा जनाब कि आपको जो खूबसूरती मिल चुकी होगी ना वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला से मुराद ये कि भाई इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये आप लोगों को देते हैं जनाब फेशियल वाले रिजल्ट्स। यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि भाई आप जो हैं कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, लेकिन ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का होगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वाले रिजल्ट दे रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप मर्द हजरात भी कर सकते हैं, आप खवातीन भी कर सकती हैं। हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप हो, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जाइए और परचेज कीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार होने वाले वो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी परचेज कीजिएगा। फेस वॉश भी लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए, दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले ऐसे जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। ओके जो ना खा अलावा डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना बाबा इन जे बारे में थोड़ा तांगे बुधाईंदी हला तो डी स्किन जो फेस वॉश जो है इनके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड कयो वयो आहे। आई हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो हों ना यो एतरो फायदेमंद हों तमाजी स्किन जे लाए जो तमाजी स्किन जे अंदर ताई वेंदो आ तमाजी स्किन के हाइड्रेट रखंदो आए, तमाजी स्किन के मॉइस्चराइज रखंदो आए, आई तमाजी स्किन के डीपली क्लीन रखंदो आए। छो तो खोड़ सारा मानो इड़ा हुंदा ने जेके पांजी डेली बेसिस जेका जिंदगी तमा गुजारियो था उन जिंदगी में खोड़ सारा मसरूफ हुंदा ने तमाजा कमकार इड़ा हुंदा जो तमा के बाहर वणणो पंदो आहे आई तमाजे चेहरे ते इलाही गंदगी जमा थी वेंदी आहे, मिट्टी हुंदी आ, धूतरो आहे, त उन सबनी चीजन के अगर ता खत्म करण चाहियो था, पांजी स्किन के क्लीन आई फ्रेश रखण चाहियो था त ता डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करे सगो था। डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे ना ही भी तमाजे लाइ मार्केट में अवेलेबल थी चुको आहे। सो तमा अजु ई वणो पांजे करीबी जनरल स्टोर सा मालूमात वठो, अगर नथो मिले त अगर मगर के
असी सजो जेको नंबर तांके बुधायो आ ना उन नंबर ते बस ता एकडी कॉल करी वेठो या एकडो मैसेज करी वेठो आई उनन के बुधायो त तवां भी इस्तेमाल करन चाहियो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो एंड सोणा थींदा रहो उन का अलावा जेके जेके सोणा मानो असा के बुधन पया सबनी के चोंदा बाबा मोहब्बतू आ ता जो प्रोग्राम ता जो पंजो आ एंड इन सोणे प्रोग्राम में तवां असा के जॉइन केना वनो पया 8881 ते एंड फेसबुक ते अच्छा फेसबुक ते बिल्कुल तवां सा प्यारा प्यारा कमेंट्स प्यारा प्यारा मैसेजेस मुखे मिलना वनन था एंड अज सवाल जको वहां का पुछवा यो बिल्कुल यो पुछवा है तवां मुखे बुधायो वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो खाती रहती है और खाती रहती है उन्हें का अलावा एकड़ो गानो हलायो आ गानो बुधू था आई तवां छा था जो मैसेज तरफ अचू था पोस्ट के लाइक शेयर कना लो अजू कंजूस न कयो था वाला

0: क्या बात है,
1: कहे मुझे
0: ओके जी, ये है गैंगस्टर गुड़िया और इसको ये दुनिया बोलती है। अरे भाई दुनिया ऐसा क्यों बोलती है, आप ऐसा कीजिए जरा, आप मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे, वो ऐसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके जी, यहाँ पर आहत भाई कहते हैं कि तमाम कर रहे हैं, हाँ हाँ भा बिल्कुल खादी हुआ है। और हबीबुल्ला लगारी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हबीबुल्ला भाई कहते हैं माशाल्लाह यू शो, थैंक यू वेरी मच। और चाचा तमाम लिंक शेयर किया, बिल्कुल तमाम जो गानों हलायों था। और सफदर लिखते हैं थैंक्स डियर, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में एक कब्रिस्तान, लोग तो जान देकर तुझे आबाद करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आहत भाई कहते हैं कि आपदा परवीन जो गानों तमाम अन्याता ही ना है बुधराय एडी नाराजगी आए छा भला न भा न भा न भा नाराजगी वरी तमाम सोनन भाईरन सा छोक नासी तमाम के बिल्कुल गाना बुधराई नासी पर एकड़ी छरता तो तासानी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो। आई मुखे बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो थव या अन्या ताई कोना, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जे करीबी जनरल स्टोर से मिली रही आहे या कोना मुखे यो भी लाजमी बुधाए जो ठीक है। गुड़िया अब बुढ़िया हो चुकी है न बाबा, गुड़िया के बुढ़िया थेने में अन्या थोड़ो अरसो लगंदो। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। अच्छा नूर फातिमा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं शहर जेकब आबाद से, भाईजान खुश आमदीद। अच्छा तारिक भाई लिखते हैं कि अदी सिद्रा अली नवाज भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अली नवाज भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। अली नवाज भाई आपको वेलकम। जो हलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे थी कौन मानू वठन था कौन नथा वठन बुधायो तो सही। कुटकी नो बाबा मानन के छो न था वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, एडी भली क्रीम तांके बुधायां थी तो तां न था वठो, या सदा जका न या सरासर ना इंसाफ या डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको फायदो आ ना वो तांके मिलंदो, आई जदी तां इस्तेमाल करना तांके खबर पंदी बाबा सिद्रा एतरो छो बुधाए थी। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूला है ना के डॉक्टर्स ठायो आए, तो तांके या भी टेंशन करने जी जरूरत ना है, तो बाबा असन जी स्किन खराब थी सके थी या असन का भी क्रीम ना हो लगाइंदा, तो तमा अगर का भी क्रीम ना हो लगाइंदा तो तमा एक दफो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी देसो। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सब नी जलाया है, यानी कि मर्द मायूं हर को हणी सके थो।

अच्छा दर्दे दिल लिखती है कि आंखों में ठहर गया वो शख्स जो हकीकत में कभी हमारा था ही नहीं। आईली सब दिल लिखती है कि माशाल्लाह मेरे साथ मुख्तियार मंगी भी आपका शो सुन रहे हैं, उन्हें भी वेलकम कर दें सिडो। मुख्तियार भाई को वेलकम कहते हैं दिल से, बहुत रिस्पेक्ट है भाई के लिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और लिखते हैं कि मुख्तियार भाई को मैं अपने पैसों से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले दूंगा, जरूर आप उन्हें लेकर दीजिएगा। मुख्तियार भाई को भी बोलिए कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहे, उन्हें पता चलेगा भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के जब वो गाने बनाएंगे ना तो आए हाय छा जाएंगे।

हाँ जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं जो हमारी भाई इस महफिल में बैठे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं। क्या बात है भाई, हद तो मत ही कहो। अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडोमरी वालों को सलाम। ओके जी, सलाम आपका पहुंच गया है। अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है। नूर फातिमा कहती हानी मेरी एक बात सुने। जी जी बोले, कहते हैं अम्मी को सलाम कह रही हैं। अम्मी, अच्छा मुझे सलाम कह रही, बहुत शुक्रिया अम्मी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरवा ने टॉपिक का जवाब दिया है, टॉपिक इंसान और उसकी लालच। सही है भाई। और मोहम्मद जुमान भाई कहते बुआ आज प्ले करें ये वाला गाना, मैं बिल्कुल आपके लिए लगाती हूँ, एक मिनट जरा सब्र करें। और नूर फातिमा आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है, मैं देखती हूँ जी जितने गाने प्ले हो सके लगा देंगे। और रशीद भाई हमारे साथ मौजूद है, रशीद भाई हमें हैदराबाद से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई आपको हैदराबाद में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि चंदा आज एक सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट आयशा एंड माय सिस अलीजा एंड यू, शो सुन रहे हैं। शमन मिलारी का है, हिक यार मुंह कयो हो, हिक यार मुंह कयो हो, चले यो मिलियो तो हलाए वठूंदा, ठीक है। इन खां अलावा तव्हां अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो पिया, तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे, पर डी स्किन जो फेस वॉश अञा ताईं अवेलेबल कोन थियो आहे, त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो बि तव्हां अवेलेबल करायो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते। ऐं हाणे इहा आसानी त तव्हां वटि बिल्कुल आहे, त तव्हांखे नंबर ॿुधायो वञे थो, ऐं नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा, आसानी थी वेंदी तव्हांजे लाइ।

ओके देखिए अब बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया और चाचा लगते हैं कि ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका जवाब है क्योंकि वो चीजें खाती हैं जलती हैं मगर कभी। ओके ओके ओके आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। और न का अलावा चौथा आपके टॉपिक का बस सही है, एक आंसर सही था बहुत ज्यादा मत दीजिए। आई तो हमारी झंडू मरी वारन के सलाम मडनायन, ठीक है जी ठीक है। और ये हमारे साथ ही जी भाई पंजल सुमरो, बॉबी खोड़ो और चाचा अब्दुल्ला आपको सलाम दे रहे हैं, उनका भी आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, सभी ये पुराने लिसनर्स से हमारे वेलकम कहते हैं।

भाई यो कमाल था वडी जो की कई वाइस के जो इस्तेमाल कन पया अच्छा छाता चो कराची में डी स्किन जो फेस वाई के चो तारे पास कम है सॉन्ग की तुम्हारी तो सही है लेकिन गाना

छाजो इंतजार था कयो। अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडो मरी वालों को सलाम के साथ मुबारक भी हो क्योंकि झंडो मरी क्रीम गाल कई ना कम मजी तमाम भी अवेलेबल कराए सको था पोस्ट के लाके शेयर कयो था कौन अजो कंजूसियों कयो था अजो कंजूसियों कयो था। अच्छा साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं कहते सलाम सिद्रा मुस्कान मुलल इस्लाम अदर फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से आज कोई शादी वाला गाना सुनाए। ओके जी शादी वाला गाना आपको सुना देते हैं क्या याद करेंगे। किशोर भाई कहते हैं अदा गुड़िया भी करे ना दिल जी रानी हुई हाने को नहीं छाती आहत भाई ये मिस चुका है वही वफाई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्रा जी क्या हाल है आपके माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम राम जेकब आबाद से आपके साथ है बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा ऑनलाइन का मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन फेस वॉश मिल रहा है या फिर नहीं ये हम पूछकर बता देंगे या फिर आप नंबर जो बता रहे हो ना उसके ऊपर रابطہ करके आप खुद ही मालूम कर लीजिए कि भाई ऑनलाइन आप सेल कर रहे हैं या फिर नहीं। जी भाई ये जो दोबारा से उनको जवानी मिली है ना ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। हाँ भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है ओके। अखलाक भाई बोले बोले क्या कहना चाहते हैं निदली कहती है कि यादा यादा सिंधी गानो प्ले कर हाजिर कयां थी अरे अदा कहती है अदा हथ मथे करे छड़ियो वा हाँ ये न चेजा तो हिक ना ओनली तो हथ मथे करना तो खबर पवी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अगर बई हथ मथे करना तो खबर पवी तो गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फेस वॉश भी इस्तेमाल कर तो हाली एक हथ मथे अव मुख्य खबर है अना तीन फेस वॉश जो यूज कोन होंद छो तो फेस वॉश अना तीन सभी जगह अवेलेबल ना है थो सो जडी फेस वॉश भी अवेलेबल थी वही तुम इस्तेमाल करो तो बई हथ मथे कर ठीक है। हाली एक हथ मथे करा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा था थोड़ी दिल के टेक मिले ओके सो इधर टाइम टू आई न्यूज ब्रेक जो नखा पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोटी तवा देतु था तवा काडी ने मजे ते बैठा हो जो ओ ही मनी ओ ही मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम हनो आई सोना थू अरे

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: पाकिस्तान जे बका जो मसलो आहे। ईरान जी सूरत हाल घणी खराब आहे, हथियार फिटा कंदा या न खबर नाहे। जेसि ताईं मां आहियां उत्तर कोरिया जे सरबराज ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरकरार आहे, जेका बरकरार ई रहंदी। निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जे साल्स मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात। कतरी सालसनि ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराकची हवाले कयो। अब्बास इराकची अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ूं अमेरिका वटि पहुची वयूं आहिनि, फ़ैसिलो ट्रम्प खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। चार दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथ कया विया आहिनि। केपीके जे इलाइक़े में मीर अली में फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम। पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सेज जे हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। गंभट भरिसां आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। बारो शहर में धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़े दौरान फायरिंग थी। गोली लॻण सबबि अजीब वारी जो मारिजी वियो आहे। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। मीरू ख़ान जे सजावल जुणे जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾोहारियुनि सां मुक़ाबिलो थियो। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾोहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनी तां क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे। सिंध में निजी क्लिनिक्स हलाईंदड़ डॉक्टर्स जो FVR पारां पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण ख़िलाफ़ सूबे में क्लिनिक्स बंदि करे एहतजाज। कराची, हैदराबाद, खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में डॉक्टर्स एहतजाजनि क्लिनिक्स बंदि रखियूं। डॉक्टरनि मेडिकल सेंटर ऐं क्लिनिक्स बंदि करे माण्हुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज कयो। डॉक्टर्स मूजिबि तिबी ख़िदमतनि ते FVR जो पॉइंट ऑफ सेल वारो निज़ाम कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। AI खां पीउ खे क़तल करण जो तरीक़ो पुछंदड़ जवाबदार 14 ॾींहनि जी रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस जवाबदार खे लाहौर जे मक़ामी अदालत में पेश कयो। जांच आफ़ीसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदार वालिद जो अकेलो पुट आहे। वालिद मूजिबि संदसि पुट उबती सुबती जांच कंदो रहंदो आहे। अदालत जवाबदार खे रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: खुशखबरी। हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जो है एडवदीन स्टॉप रोड आमू।

जनाब सखर मोरो प्यारी सकरन मेहरा पर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करें। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आपका फीडबैक क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे एरिया में नहीं मिल रहे हैं, वो को नंबर ऑलरेडी बता दिया जाता है, प्राप्त करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन अवेलेबल तो अवेलेबल कराते रहिए खूबसूरती का। नंबर जरा नोट कीजिएगा, नंबर आपको बता रही हूँ, नंबर से जनाब 03125 50 970 आई योर नंबर आहे 03-273-8-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आए जी तुम डायल करिए पांचे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो अगर हिकड़ी गाल यहां भी अच्छी बने थी तो तुम अगर अन्य तुम्हारी उम्र ना थी या फिर तुम क्रीमू ना हो इस्तेमाल करना तो तुम मायू तो तुम लाजमी चवन तो एक दफो जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज जरूर कर ट्राई कर खबर पवी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो सफा रेगुलर जो नाइट क्रीमू लगाई उन ब्यूटी क्रीम जो है सिर्फ

खुद अब अमीर लगता हूँ, अमीर लगता हूँ। सही सही मैं कहा ये अमीर क्या, अमीर लगते हैं। और सिद्रा मैंने सुना है आपकी साइड में जैतून डाढ़ा थींदा है न, आपका तो अपना बाग होगा। हाँ हाँ जैतून डाढ़ा थींदा है।

वो जो नूर मोहम्मद कोरकानी से फ्रॉम कादिर बख्श कोरकानी हमारे साथ हैं। कहते प्रोग्राम वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया कादिर भाई आज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया। महबूब अली हमारे साथ हैं मोरो सिटी से, कहते कौन से वेलकम खुश आमदी सिस्टर, वेरी नाइस योर शो वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुंज, हमें सॉन्ग सुनाए हदीका क्याने का, सो नाइस ऑफ यू। ओके मैं हदीका क्यानी का कोई भी प्यारा सा गाना आपको डेडिकेट कर दूंगी। ये हमारे साथ है सामल ढीलू फ्रॉम मोरो, फ्रेंड अब्दुल रजाक को सलाम देना चाहता हूँ, एंड प्लीज प्ले शमन मिराली रात खामोश आ चंद्र मधोश, माँ भाजी पसंद हलाने की फुल कोशिश कदम। और चाचा खालिद हमारे साथ है पैनल पर। ओके चाचा अगर हाने न हलाए तो गानों तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुकून से गानों बुधंदी, ठीक है? छो तो तुम गानो कुछ अड़ो है। ओके जी घोटकी से गुलशेर मंगरू हमारे साथ है, सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर सिद्रा, मुझे गाना सुनाओ मुमताज मलाई का सॉन्ग है। अच्छा गानो लिखो आ सही मां कोशिश कियां थी ता जो गानो बुदना सी। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम आपको। और ये हमारे साथ हैं जियो चाचा खालिद जियो झंडो मरी खां अली हुसैन खास के लिए, मंजूर अली खास के लिए, गुलबहार खास के लिए, यार मोहम्मद खास के लिए भाव साथ हुआ भला ता में का डील बिल थी आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन झंडो मरी वाला हाल हवाल तो यो। अच्छा मकसूद भला कहते हैं सिद्रा कितना मुश्किल सवाल कर दिया है, कितना लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको जवाब ना दे सकूं जवाब जो तुम दिनो आ न बाबा, यो पढ़ने जड़ो आ पर छा कयूं पढ़ी न था सकूं बस तमाम मुझे ख्याल में सही जवाब दे छो है। अच्छा अल्ताफ कोसू जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले अच्छा गानो लिखी हुआ ही डेडिकेट बिस्मिल अजरा कोसो एंड मी, थैंक्स चाचू थैंक्स। और महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा जवाब दिनो है सही सही सही। गोटकी से गुलशेर मंगरियो सिद्रा गाना जो लिखा है वो सुनाओ, हाजिर हाजिर हाजिर। अब्दुल्ला माहिर भाई मीरपुर खास से कहते हैं डेडिकेट माई सिस्टर साइमा मीर को एंड सिस्टर दर्दे दिल को, निदा अली डेडिकेट आपको सॉन्ग होमेरा चन्ना। ओके अब्दुल्ला भाई अज मतलब डेडिकेशन सेंड करे छो सही आ सही आ, बी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था न हबीबुल्ला थेबू कहते हैं शो तमाजो लाजवाब आए, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। मुनवर मुगल आ चुके हैं कहते हैं सलाम बेना सिद्रा मुस्कान और लाड़काना वालों को, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कभी कभी आकर ऐसे बिल्कुल सलाम दुआ किया करें, क्या हाल चाल है ठीक ठाक है मजे में। और वरियाम अली हमारे साथ कहते हैं सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक सा सलाम था कयूं, एंड वीआईपी सफा शो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करे बिल्कुल बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल ही अलाए चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना वारन का तो पुछो।

बाबा अगर तव्हांजे घर में बि शादी आहे या तव्हांजी शादी थी रही आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे नवसार जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जीअं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट मिलनि जेके तव्हां हासिल करणु चाहियो था। तव्हांजे चहिरे ते एॾो वीआईपी नूर अची वेंदो, तव्हां खां माण्हू पुछंदा ॿुधायो त छा इस्तेमाल कयो अथव, कहिड़ा फेशियल कराया अथव, ऐं तव्हां हुननि खे चओ बाबा फेशियल जो टाइम असां वटि त कोन्हे को, शादी जो घर आहे, इलाही सारा कम हूंदा आहिनि। तव्हां बसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा, तव्हांखे मिलंदा उहो रिज़ल्ट जेको सफ़ाई महांगा महांगा फेशियल कराइण खां पोइ तव्हांखे मिलंदो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल अथव।

सात भाई लिखते हैं कि असां डोडियो भी पांचियों कयूं आहिनि. अल्लाह वाह साईं वाह, तरक्या वियो छा. हां गुलाबी जोड़ी जी वाकई वाई बची पई, वीडियो भी ओड़ो होयो से. अच्छा शब्द लिखते हैं कि नाई जवाब सॉन्ग के बीच में बात करती हैं तो अच्छा लगता है. कुछ मानो उनकी वरी सुठो नाए लगंदो पर असां भी ब्लू लगंदो आ. ॻाल्हाईंदासीं हिन विच ते त पोइ बाबा ही तव्हांजा मैसेज केरु पढ़ंदो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में केरु ॿुधाईंदो.

बिल्कुल जी, याद आ। और अखलाक भाई कहते हरू भरू हथ मथे कराया अथई, हरू भरू कोन कराया बाबा, खबर पई तो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अमान अल्लाह दल हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम भाई। मिदड़ी लिखती है कि हिरा हाशमी माय फ्रेंड, मैं क्यों भला पीछे रहूं, ओ यह गाल। अच्छा, हमारे साथ ही उसामा और फराज हमारा शो रोज सुनते हैं, बहुत शुक्रिया उसामा और फराज, आप दोनों को वेलकम कहते हैं।

भाई असा आगे तो सब कुछ याद आए ताकि याद ना आए तो सही है ताकि बस डे स्किन ब्यूटी क्रीम याद हो जाए। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है। शाहिद भट्टी और सिकंदर मक्सी शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी मालिक। अच्छा नजर हुसैन मलिक भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक भाई। अली नवाज सारकी हमारे साथ हैं, कहते हैं मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में डी स्किन मौजूद है। वाह सही वाह, मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में तव्हां खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी बाबा, तव्हां वञो ऐं वठी अचो। अच्छा नज़र मोहम्मद भट्टी भाई छा था चो आज राहत फतेह का गाना ये गानो बुधराईंदासीं। फरवा कहती आप ही प्लीज सॉन्ग रोके इनकी आएगी ये रातां कभी, मां दिसां थी हलाए बैठूं था। और अलीशी बिरोही हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आपके आप हमारे बठो रोज सुनता हूँ लेकिन मैसेज आज किया है, गुड हो रहा है आपका शो, बहुत शुक्रिया अलीशी बिरोही भाई, वेलकम कहते हैं आपको। अच्छा हजार जतोई भाई भी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम हजार भाओ, हजार को लो कराया कराया था डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो सही आ।

अच्छा फरवा की दी, अभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट VIP मिला है। हाँ जी बिल्कुल, मेडिकेटेड फार्मूला है, इसीलिए तो कहती हूँ सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निजाम भाई हमें सुन रहे हैं मटियारी खां, निजामुद्दीन भट्टी और अली शेर भट्टी।

फरहान अली भट्टी, नियाज मोहम्मद भट्टी, जाहिद भट्टी, फराज भट्टी, बुधू पया अदी। अज त असांजी फरमाइश पूरी करियो, शमन मिराली जो सॉन्ग बुधरायो। हाज़िर शमन हलायूं था। अच्छा चाचा की थी लगाया पयो लगाया बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम ओ ये लगायो लगायो बाबा शादी कैंसी बानो हद।

स्टे कनेक्टेड इन की लिसनिंग. आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से. तो सुनिएगा और साथ दीजिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream,
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला स्किन के बनाए निखार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हाँ भाई देख ले ये कितने मासूम है लड़के, शादी का गाना सुनकर ही खुश हो जाते हैं। सही बात है। चलें जो जो लड़के बेचारे चाहते कि भी हमारी शादी होनी चाहिए, तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई ना, तो वजह ये है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद ही आपको क्या ही जबरदस्त और मस्त सा रिजल्ट मिलेगा, जो देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यह खास काल आए तो बाबा ही हर स्किन जी मथा लगाए सकजन था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो का टेंशन जी गाली कोने का, ता सब मानू लगाए सगो था, आई पांजी खूबसूरती में इजाफो आने सगो था। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा गाल मुके डाडी सुठी लगनिया, ता बाबा इनके हर स्किन जी लाए तैयार कयो या ये मेडिकेटेड फार्मूलो आहे।

बिल्कुल जी, सदको ही वेंदा सदको वेंदा जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि आप भी इस्तेमालु करणु चाहते हैं तो लाज़मी इस्तेमालु कीजिएगा। ख़ूबसूरती

आज मेरा मूड था कि कोई सैडी और कोई स्लो सा गाना नहीं लगाएंगे प्रोग्राम में, तो इसी वजह से बस गाने अच्छे अच्छे लगाए हैं। और रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम और अलैहिस्सलाम। मदद कहते हैं बहना कैसी हो, शो नाइस है, सॉन्ग सुनाए। तमाजा गाना तो कड़ी कड़ी मुख्य समझ में ना है नींदा, सो रमजान भाई आज मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया। निजाम भट्टी ना की प्रोग्राम बने पे, थैंक यू। अच्छा कामरान भाई कहते हैं कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सीक्रेट, हाँ जी तुम्हारी खूबसूरती जो सीक्रेट आए तमाम भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करो एंड नेचुरली खूबसूरत थी वजो। अली शेर बिरोही कहते हैं सिद्रा सिस मैंने आपका शो 10 लोगों को शेयर किया है, अब मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करें। हाँ जी चलिए गाना ये

अच्छा मरियाम कहती है तबीयत सही है अब जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मजे में और हमारे साथ ही ये जनाब कहती है शो इज लशपश। अच्छा तुम पुछो है रुखसार कड़ी इंदी रुखसार सुभाणी प्रोग्राम कंदी सुभाणी रुखसार जो प्रोग्राम थींदो सही आहे।

अच्छा हाँ जी एम बलोच मीरपुर खासी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई। ओके भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, थैंक यू सो मच। कहते हैं लाजवाब शो, हाँ जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो लाजवाब ही होगा ना, और मेलसी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्द दिल कहती है चंदा मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ, बहुत अच्छी है, अमेजिंग। ओ ऐसे ही लगाते रहिए। और कहती नाइस सॉन्ग शमन का। अच्छा रमजान भाई तमहा शायरी लिखी है, एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल सबर का आदि मुझे रोने नहीं देता, मैं उसका हूँ ये राज तो वही जान गया, वो हर किसी का है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। आई ली अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि शबाना कोयल चवंदी आए शादी बर्बादी आए मानू छड़ो भलो आए, वो ही जो हेडी दुनिया शादी करे थी तो न करे, करे बाबा शादी करे, ये वो लड्डू है जो खाकर भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, तो मुझे लगता है कि खाकर पछताना चाहिए।

ओके सो शाहिद बब्बर का गाना लास्ट में मैंने लगा लिया है जो कि बड़ा अच्छा होने वाला है. और मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं मोरो से, बहुत शुक्रिया. घोटकी से गुलशेर मंगरियो, गाना जल्दी हलाए भुख लगी यार, गाने से भी भुख लगंदी छा भला. अच्छा किशोर भाई ने शायरी भेजी है, कहते कभी ये दुआ कि वो मेरा है फकत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियां, कभी ये डर कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू कि वो मांगे जो उसे मिल जाए, कभी ये विश्वासा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं. ये शायरी मैंने इतनी पढ़ी है कि मुझे लगता है कि अब मुझे याद ही हो गई है. और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई. बिल्कुल जी, झंडो मरी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है. आई वाकई यू मां कल ही डिठो तो एकड़ी दादी जो नालो किश्वर हुयो, आई उनके दादी ना उनके दादा कोटिन पिया ना दद्दा. Sounds funny.

न बाबा न चार्जो चए तो क्रीम जो मसाज तो लाजमी न मसाज न कजो जदे ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ना तो उनके आराम सा प्यारन प्यारन हल्कन हल्कन आंगरन ये लगाए तो क्रीम थोड़ी थोड़ी ताजे चेहरे ते नजर अचे मसाज न कंदा कयो ठीक आ खास करे नाइट क्रीम जेका तवा लगाए था उनते मसाज बिल्कुल भी न कंदा कयो तो जदे ता मसाज कंदा ना तो थोड़ो मामलो खराब थी सके तो सो मसाज न कंदा कयो मसाज सिर्फ फेशियल में कबो आहे आई ही ताके फेशियल वारो रिजल्ट दीदी पर ही फेशियल ना है सो ही 2-in-1 फार्मूलो आहे फेशियल जा इन जे अंदर यानी के फेशियल जो चीजों एडे थियल आहन पर ही बजाए नाइट क्रीम है।

हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद। अच्छा नूर फातिमा, तुम्हारे लाइक एडो गानो चयो यो सुनी। तारिक हुसैन लोहर भागी मर्शद मौजूद है, बहुत शुक्रिया। निधड़ी कहती कि हाँ ना, लोगों को लिखना नहीं आता, आई थिंक इसीलिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने लिख दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा नूर फातिमा कहती है कि हानी मेरी खाला भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करती है, खाला भी करती है, तो अब आप भी यूज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। निदली कहती है सलाम टू साइमा मीर, उसको बोलो कब तक मैसेज करोगी, पोस्ट पर आओ धमाका करते हम। साइमा मीर जो है ना अन्या ताई बटन वारो मोबाइल हलाई दिया। साइमा मीर फेसबुक ते ना ही। महबूब अली मोरो सिटी से मेरे साथ मौजूद है, महबूब भाई वेलकम। जामिन अली शादी तो भी इंदो आही छा। हाँ पर सब सिंगर रहिंदा है, जामिन भी इंदो हुंदो। सही गाल है। अच्छा मंसूर हुसैन अंसारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम इन खुश आमदीद। मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। अच्छा टॉपिक का जवाब बता देते हैं, तो सवाल जो मैंने आज किया था वो क्या है, जिसका पेट भरा हुआ था फिर भी वो खाती जाती है, तो उसका जवाब जो था वो आग था। और मुझे नहीं याद आ रहा कि सबसे पहले जवाब किसने दिया था, तो बस वो पांजे भर में खुश थी मैंने, तो यस आई एम विनर। हाँ जी बिल्कुल, सभी लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अमानुल्लाह महर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निधड़ी कहती है जारू की दादी है ना, उसको बोलते हैं दद्दा। हाँ जी पता नहीं वो ड्रामे में है ना, उसको बोलते हैं। और मेरी छोटी भांजी बोलती है दद्दा दद्दा। तो बस मैं जब भी वो दद्दा सुनती हूँ तो मुझे मेरी भांजी याद आ जाती है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत। रसूल बख्श बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम। बस आने बस क्यों चुप क्यों, पोस्ट के लाइक और शेयर करे छजो। सो वरी तहां सा मिलू था 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ रुसरो ख्याल रखना। आई जी अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कोन कयो आहे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। आई मिलू था 5

0: It's 3.
1: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: राज लगंदो इस्लामाबाद में मीडिया सां गालाईंदे PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर जो आहे त डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी आहे। लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ही आहे।
6: हमें लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कमजोर हो चुके हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर के पास गए, जिसको वो आलाकार कहते थे, मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे फैजान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पोलिटिकली वो बहुत वीक हो।
5: PTI वारा सियासी तौर ते घणो कमजोर थी विया आहिनि, लॉन्ग मार्च करे न सघंदा। समावारे वफाकी वज़ीर अतातारण चयो आहे त सुहेल आफरीदी जंहिं तरीक़े सां अली अमन गुंडापुर वटि वियो, सभिनी जे साम्हूं आहे। सुहेल आफरीदी वटि सियासी सघ नाहे रही। ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे। हथियार फिटा कंदा या न ख़बर नाहे, जेसिताईं मां आहियां उत्तर कोरिया जो सरबराह ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंद कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार ई रहंदी। निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़चे जी सार्स मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात। कतरी सार्सनि ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराक़चे हवाले कयो। अब्बास इराक़चे अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ू अमेरिका वटि पहुची वयूं आहिनि, फ़ैसिलो ट्रम्प खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार आलमी मुआहिदनि खे एकतरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे। तय थियल मुआहिदनि ते अमल करण बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसी अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुको आहे। सुल्ह समारो वफ़ाकी वज़ीर अतातारण चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम करण मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे जे तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणण लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठाह न कंदो। सिंतास मुआहिदो पाकिस्तानियुनि जे बका जो मसलो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जो KPK ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथ कया विया आहिनि। KPK जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम वई आहे। पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जनम बेड़ो थी वियो आहे। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सेज जे हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां KPK ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
7: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जेकर तव्हां कंहिं

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 4 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: आप सुन रहे थे जीए, अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
8: डायरेक्शन चलते हैं किसी और के कहने से कुछ नहीं।
9: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाए ही आए, सोहेल आफरीदी के बानी है, पार्टी की हिमायत हासिल आए, KPK में न एमरजेंसी लगंदी, नई गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गाले पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है, डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी है, लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है।
10: मुझे लगता है कि ये अब सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं। किस तरीके से वो अली भी गंडापुर के पास गए, जिसको वो आलायकार कहते थे, मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर सुल्तान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पोलिटिकली वो बहुत वीक।
9: पीटीआई वारा सियासी तौर ते घणो कमजोर थी विया आहिनि, लॉन्ग मार्च करे न सघंदा। सुदसमा वारे वफाकी वजीर अतारण चयो आहे त सोहेल आफरीदी जंहिं तरीक़े सां अली अमन गंडापुर वटि वियो, सभिनी जे साम्हूं आहे। पीपल्स पार्टी जे नेहर हुसैन बुखारी चयो आहे त सूबाई हुकूमत जी नाकामीअ ते गवर्नर राज लॻी सघे थो। वफ़ा KPK में गवर्नर राज बाबति मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो ॾिनो वेंदो। KPK में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे, हथियार फिटा कंदा या न ख़बर न आहे। जेसिताईं मां आहियां उत्तर कोरिया ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख़्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार ई रहंदी। निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जी साल्स मुल्क खतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात। कतरी सालसनि ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराकची हवाले कयो। अब्बास इराकची अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे। ईरान अमेरिका वटि पहुची वई। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। आलमी मुआहिदनि खे हिकु तरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे, तय थियल मुआहिदनि ते अमल करणु बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसे अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे। सुद समाउ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतारण चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे जे तहफ़ लाइ घुरबल क़दम खणण लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठा न कंदो। सिंतास मुआहिदो पाकिस्तान जे बका जो मसलो आहे। सूबनि वारी ॻाल्हियुनि ते ध्यान न ॾियणु घुर्जे, न ई परेशान थियणु घुर्जे। मोहसिन नक़वी जे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां का मुलाक़ात।

0: नाए थी मुलाकात वारियूं ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि, ग़लति ख़बर सबबि बदनामी थिए थी, ग़लति ख़बरुनि खे कीअं रोकजे, साफ़ी मशवरा ॾियनि। कराची प्रेस क्लब में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे शर्जिली नाम महिमन चयो त नवनि सूबनि बाबति पीपल्स पार्टीअ जी पॉलिसी वाज़े आहे। सिंध असेंबलीअ बि फ़ैसिलो अॻी ॾेई चुकी हुई, हाणे गोड़ थियो त वरी बि फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जो शिकार रहियो आहे। लॉन्ग मार्च कंहिं मक़सद लाइ कया वेंदा आहिनि, पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानीअ खे आज़ाद कराइण आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथिया विया आहिनि। केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी कोशिश नाकाम, पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो कयो वियो। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई, हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नकवी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। सोमालिया में सामूंडी धाड़ेलनि जे कब्ज़े हेठि बहरी जहाज़ खे छॾाइण लाइ सोमाली फ़ौज जो ऑपरेशन, जहाज़ ते मौजूद पाकिस्तानी अमले मां कुझ जे मारजण जा इतला मिलिया आहिनि। जहाज़ ते मौजूद पाकिस्तानी अमले जे वारसनि मौजूद सोमालिया फोर्सिस जे ऑपरेशन में 5 ॼणा मारिजी विया आहिनि, जिन मां 3 पाकिस्तानी आहिनि। संदन लाश ख़राब थी रहिया आहिनि, मदद कई वञे। गंबट भरसां आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पेसनि जी लेती लेती तां झेड़ो थी पियो, हिकु ॼणो क़तल, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी विया। भारो शहर में धुरियुनि जे पेसनि जी लेती लेती तां झेड़े दौरान फायरिंग में गोली लॻण सबबि अजीब वारी जो मारिजी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया। लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। में निजी क्लिनिक्स हलाईंदड़ डॉक्टर्स जो एफबीआर पारां पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण ख़िलाफ़ सूबे में क्लिनिक्स बंदि करे एहतजाज कयो वियो। कराची, हैदराबाद, खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में डॉक्टर्स एहतजाजनि क्लिनिक्स बंदि रखियूं। डॉक्टरनि मेडिकल सेंटर क्लिनिक्स बंदि करे ॿाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज कयो। डॉक्टर्स मौजूद तिबी ख़िदमतनि ते एफबीआर जो पॉइंट ऑफ सेल निवारो निज़ाम कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे, फ़ैसिलो वापस वरितो वञे। एआई खां पीउ खे क़तल करण जो तरीक़ो पुछंदड़ जवाबदार 14 ॾींहनि जी रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस जवाबदार खे लाहौर जे मक़ामी अदालत में पेश कयो। जांच आफ़िसर अकेलो मलीर में पोइ कासिम वारनि खे रसन सां फरार थी विया। ज़रियनि मूजिबि 15 खां 20 हथियार भित टपी ड्यूटीअ ते मौजूद ॿिनि पुलिस अहलकारनि ऐं गार्डनि खे जर्गमाल बणाए रसन सां ॿधो। फोरन सरकारी ऐं ज़ाती हथियार, मैगज़ीन, गोलियूं ऐं मोबाइल फोन फुर कया। हिकु गार्ड पंहिंजा हथ खोलण बाद ॿियनि साथियुनि खे आज़ाद कयो। वाके जो केस दाख़िल। हैदराबाद जे लतीफ़ाबाद वारे इलाइक़े में 14 वरनि जे लींगर चोरी इल्ज़ाम हेठि वेशानो तशदुद कयो वियो। शहरनि चोरी जे इल्ज़ाम हेठि लींगर खे थंभे सां ॿधी तशदुद जो निशानो बणायो। वाके जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई। पुलिस जो चवण आहे त मुतासिर लींगर खे हथ कयो वियो आहे। तशदुद कंदड़ जवाबदारनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। ऐं दुबई खां तेल अबीब ईंदड़ मुसाफ़िर जहाज़ सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग, समूरा मुसाफ़िर ऐं अमलो महफ़ूज़ रहिया। इसराइली मीडिया मूजिबि जहाज़ हिकु पायलट जहाज़ खे क्रैश करण जी कोशिश कई, जंहिं खे ॿिए पायलट नाकाम बणायो। पायलट साथी पायलट खे रोकण ते चाकू हणी ज़ख़्मी बि कयो। सऊदी अरब में इम्कानी तौर जहाज़ खे तबाह करण जी कोशिश कंदड़ पायलट खे रहियो। मुसाफ़िर जहाज़ दुबई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जिस धरती से जुड़ा शहबाज़
4: नहीं है आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: संगीत FM 91.6 जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज़ जी
1: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मिक्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमड़ी ग्लो डी स्किन ब्यूटी असली ग्लो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम
1: बनी है आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जी नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: ग्रेनुलर मिट्टी हाई
3: खेती में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सूबाई हुकूमत की इसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के निकास की बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जुटी कर काम करे।
4: मुझे काफी लगता है अच्छी तौर पर वो अली अली गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे मुख्तलिफ हल्का बात से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर फरीखान अफरीदी के पास की सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पोलिटिकली वो बहुत वीक है।
5: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या इमरजेंसी वफाकी हुकूमती मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वफाकी वजीर तारिक पचल चौधरी केपी में इमरजेंसी लगान के संजीदा वोट थियण की तस्दीक कर छी। तारिक पचल चौधरी है केपी में वधंदड़ दहशतगर्दी ए सूबाई हुकूमत के कम न करण सबब आईन के आर्टिकल 232 ते गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी भी जरूर साथ डींदी। वफाकी वजीर अताला तार है पीटीआई कमजोर थी है, सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च करे न सघंदो का भी परेशानी न आहे।
6: यही रूट है और क्या कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल आफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है। खान का मैंडेट चलता है, खान की डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
5: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई है, सुहेल आफरीदी के पानी और पार्टी की हिमायत हासिल है कि खैबर पख्तूनख्वा में नई इमरजेंसी लगती और नई गवर्नर आज लगो। इस्लामाबाद में मीडिया से गलते पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है डायरेक्शन रुगो पानी की हल। लॉन्ग मार्च को रूट तो इस्लामाबाद जो ही है। केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आईन मौजिब मशवरो दिनो वो केपी में गवर्नर राज आईन का मथाहों न हों। पीपल्स पार्टी के मरकजी गुआ नैयद हुसैन बुखारी है खबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तई खराब है। पीटीआई के भी रिलीफ मसाहमत से न पर रवैयो सुठो ना रो एहतजाज के नारे शहर से हमलो कर कबूल जोगो ना है। जिस तई मां आहियां उत्तर कोरिया जो सरबरा सां गालींदे अमरीका में पसंद कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बेहतरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी बरतरी बरकरार आहे, जेका बरकरार ई रहंदी निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची तफ़्तीशन ते अमरीकी जवाब मिलण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान फातिमा महाजरानी चयो आहे त अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब खां काबीना खे आगाह कयो आहे। अमरीकी तजवीज़ ख़ते में जारी जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां आहे। आलमी माहिदनि खे हिकतरफ़ो ख़तम या मुअत्तल नथो करे सघिजे, तय थियल माहिदनि ते माहिदे बाबति आलम ॾेई चुकी आहे। सुद सभा वारे वफाकी वज़ीर अताला तार चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे ख़तम तोड़ी मुअत्तल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंध तास माहिदे करण लाइ तयार आहे, ते को सिंध तास माहिदो पाकिस्तान जो मसइलो आहे। सूबनि वारी ॻाल्हि

0: ते ध्यान न ॾियण घुर्जे न ई परेशान थियण घुर्जे। मोहसिन नकवी जी सरदार आसिफ अली सरदारी सां का मुलाकात नाहे थी। मुलाकात वारियूं ॻाल्हियूं मफ़रूज़ आहिनि। ग़लति ख़बर सबबि बदनामी थिए थी। ग़लति ख़बरनि खे कीअं रोकजे, साफ़ी मशवरा ॾियनि। कराची प्रेस क्लब में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे शर्जीला मेमण चयो त नवनि सूबनि बाबति पीपल्स पार्टी जी पॉलिसी वाज़े आहे। सिंध असेंबली बि फ़ैसिलो अॻु ॾेई चुकी हुई, हाणे गोड़ थियो त वरी बि फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी जो शिकार रहियो आहे। लॉन्ग मार्च कंहिं मक़सद लाइ कया वेंदा आहिनि, पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो सदन बानी खे आज़ाद करण आहे। पाकिस्तान में चार दहशतगर्द मारिजी विया हथियार हथ। केपी जे इलाइक़े मिर्ज़ जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खानी खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम। पंहिंजो ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जनम भीड़ो थी वियो। बलोचिस्तान जे सोरा एमपी फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। गरु वज़ीर मोहसिन नकवी पारां केपी ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़। उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: 진짜 좋아 봐. 71.6. 진짜 좋아 봐. 부탁다라.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर
2: उसी खित्ते की बस
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी है जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे GAFM
3: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरदार आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करने जो इम्कान मुल्की सियासी सूरत हाल खास तौर से केपी में अमन अमान वाली सूरत हाल से गौर कर वेंदो।
4: केपी में बैठी हुई दहशतगर्दी और सूबाई हुकूमत की उसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी के निकास की बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जुटी है ताउन करेगी।
5: मुझे लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कमजोर है जिस तरीके से वो अली गंडापुर के पास गए जिसको वो आला कार कहते थे मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर फैजान अफरीदी के पास शक्त है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक है।
3: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज या इमरजेंसी वफाकी हुकूमती मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगने से संजीदा गौर थियण की तस्दीक कर छी। तारिक फजल चौधरी चयो है खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी ए सूबाई हुकूमत के कम न करण सबब आईन के आर्टिकल 232 ते गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी भी जरूर साथ दींदी। वफाकी वजीर अताला तारड़ चयो है पीटीआई कमजोर थी वही है सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च करे न सकंदो का भी परेशानी न है।
6: होगी ना वो होगा गवर्नर रूल यही रूट है और क्या रूट है अनलस के कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है खान का मैंडेट चलता है खान के डायरेक्शन चलते हैं किसी और के कहने से कुछ नहीं।
3: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई है सुहेल अफरीदी के बानी है पार्टी की हिमायत हासिल है केपी में नए इमरजेंसी लगंदी है नई गवर्नर आज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गलाइंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो है डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी है लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ही है। केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आइन मूजिब मशवरो दिनो वेंदो। केपी में गवर्नर राज आइन का मथाहू न हों पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नैयर हुसैन बुखारी है केपी में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है पीटीआई के भी रिलीफ मजामत से न पर अदलिया में मिल पीटीआई जो रवैयो सुठो न रो एहतजाज के नाले से शहर से हमलो कर कबूलन जोगो न ईरान की सूरत हाल घनी खराब है हथियार पिटा कदा या न खबर न है जिस तई मां या उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो। वाशिंगटन में मीडिया से गलाइंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त समूरी दुनिया में वाहिद मां शख्स आया जो किम जोंग उन के पसंद कन्दो आया हूं मुझो बेहतरीन दोस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की बरतरी बरकरार है जी बरकरार ही रही निगरानी लाय कमेटी भी जोड़े रहा आयो। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची तजवीज़न ते अमरीकी जवाब मिलण की तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वज़ारत के तर्जुमान फातिमा माजरानी चयो है अब्बास अराग़ची अमरीका जवाब का काबीना के आगाह कयो है अमरीकी तजवीज़ खिते में जारी जंग के खात्मे के हवाले से है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6।
8: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
9: उसी खित्ते की बनी है आवाज
8: GAFM नेटवर्क
9: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंद

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा,
2: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
5: बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें जितना काउंट करेगी,
6: मुझे अभी लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कम लोग हैं। जिस तरीके से वो अली अली गंडापुर के पास गए, जिसको वो आला कार कहते थे, मुख्तलिफ हल्काबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे सुल्तान अफरीदी के पास ये शक्त है कि वो ये नॉर्मल चल सके। आई थिंक पोलिटिकली वो बहुत वीक है।
7: पीटीआई वारा सियासी तौर से घणो कमजोर थी वया आहिन, लॉन्ग मार्च करे न सकंदा। सुबसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सोहेल अफरीदी जैं तरीके सां अली अमीन गंडापुर वट वयो सभिनी जे साम्हूं आहे। पीपुल्स पार्टी जे नैर बुखारी चयो त सूबाई हुकूमत जी नाकामीअ ते गवर्नर राज लॻी सघे थो। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज बाबति मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो ॾिनो वेंदो। केपीअ में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे, हथियार फिटा कंदा या न ख़बर नाहे। जेसिताईं मां आहियां उत्तर कोरिया जो सरबराह, वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रारी रहंदी। निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राक्चीअ जी सालिस मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात। कतरी सालिस ईरानी तजवीज़नि ते अमरीकी जवाब अब्बास राक्चीअ हवाले कयो। अब्बास राक्ची अमरीकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ू अमरीका वटि पहुची वयूं आहिनि, फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। आलमी मुआहिदनि खे हिकु तरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे, तय थियल मुआहिदनि ते अमल करण बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसी अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी। सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान मुआहिदे जी तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणण लाइ तयार आहे।

गंबट वे जो आरिजा बिरादरी जी बिन धुरन में पैसन जी देती लेती है ता झेड़ो एक जनो कत्ल बस जख्मी बहारो शहर में धुरन में पैसन जी देती लेती है ता झेड़े दौरान फायरिंग गोली लगन सबब अजीब आरी जो मारची वयो बजाना जख्मी थी पया लाश है जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरन जी मुतालबन जे मंता लाए मुल्क गीर हड़ताल 11 अक्टूबर ते आल पाकिस्तान डॉक्टर्स कन्वेंशन तलब। सिंध पंजाब बलोचिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा जे मुख्तलिफ जिलन में खानगी तिबी खिदमतू मुअत्तल रहियूं। हड़ताल दौरान सरकारी अस्पतालुन में इमरजेंसी आईसीयू सीसीयू ए बियूं खिदमतू जारी रहियूं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चयो आहे त एफबीआर जी टैक्स पॉलिसी पीओएस मशीनन जी लाज़मी तनसीब ए सेक्शन 175C तहत डंड खिलाफ एहतजाज कयो वियो। मुतालबा मंजूर न थिया त मुल्कगीर तिबी खिदमतू अणॼातल मुदे ताईं बंद करण बाबति फैसलो कयो वेंदो।

AI खां पीउ खे क़तल करण जो तरीक़ो पुछंदड़ जवाबदार 14 ॾींहनि जी रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस जवाबदार खे लाहौर जी मक़ामी अदालत में पेश कयो। जांच ऑफिसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदार वालिद जो अकेलो पुटु आहे। वालिद मूजिबि संदसि पुटु उबती सुबती जांच कंदो रहंदो आहे। अदालत जवाबदार खे रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: जो गीत संगीत FM 91 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
2: की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज कीजिए प्यारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: इत्ते की
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़
2: की FM आवाज

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

जवां मेरी जाने जहां है ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ए जाने जा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहर,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए
2: की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेट।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सूबाई हुकूमत जे कम न करण सबब आइन जे आर्टिकल 232 ते गौर करे रही आहे। पीपल्स पार्टी बि ज़रूर साथ थी रहे वज़ीर आज़म में।
1: होगी ना वो गवर्न रूल, यही रूट है और क्या रूट है। अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को, खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, फिर पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है। खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और की कहने से कुछ नहीं।
2: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई गया है, सुहेल अफरीदी के बानी पार्टी की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में नत इमर नई वरी गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो चवण हो तो डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी, लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ही है।
0: केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी ते गवर्नर राज लगी सके तो फाक केपी में गवर्नर राज बाबत मशावरत कई तो आइन वो मशवरो दिनो वेंदो। केपी में गवर्नर राज आइन का मथाउ न हों। पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नैयर हुसैन बुखारी है केपी में अमन अमान की सूरत हाल इंतई खराब है, पीटीआई के भी रिलीफ मजामत से न पर अदलिया में मिल। पीटीआई जो रवैयो सुठो ना रो, एहतजाज के नारे से शहर से हमलो कर कबूल जगो न है।
2: ईरान की सूरत हाल घनी खराब है, हथियार फिटा कंदा या न या खबर ना है। जेस ताई मां आया उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया से गालंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आया जो किम जोंग के पसंद कंदो आया, मुझो बेहतरीन दोस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका की बरतरी बरकरार है, जेका बरकरार ही रहंदी निगरानी लाइ कमेटी भी जोड़े रहा हूं।
0: जवाब मिलने की तस्दीक कर छी ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान फातिमा माजरानी है तो अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब का काबीना के आगाह किया है। अमरीकी तजवीज खत्ते में जारी जंग के खात्मे के हवाले से है।
2: सऊदी अरब जो दुश्मन पाकिस्तान जो दुश्मन है, हुसैन खिलाफ सऊदी अरब के पाकिस्तान सब वसीला फराम कंदो। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चाहे तो पाकिस्तान जो दिफाई सलाहतू मुआदे तहत सऊदी अरब लाए मौजूद हैं, सऊदी के मदद फराम करने वाले अजम में का भी घटताई ना है, मदद लाए तैयार आयु।
0: आलमी माहिदन के एक तरफो खत्म या मुअत्तल न तो कर सकती है, तय थियल माहिदन ते अमल करण भी लाजिम हों। सिंतास माहिदे बाबत आलमी सालिसी अदालत भी पाकिस्तान के हक में फैसलो दे चुकी है। सुद समाह वाले फाकी वजीर अल्लाह तर सिंतास माहिदे के खत्म कदम करने लाए तैयार है। पाकिस्तान पिंजे पानी के हिस्से से को भी टा न कन्द, सिंतास माहिदो पाकिस्तान की बका जो मसलो है।
2: सूबन वाली गाल ध्यान न दियण घुर्जे न ही परेशान थियण घुर्जे। मोहसन नकवी की सदर से का भी मुलाकात ना थी, मुलाकात वाली गाल बेबुनियाद आहिन, गलत खबर सब बदनामी थे थी, गलत खबरों के किन रोकजे, सहाफी मशवरा दें। कराची प्रेस क्लब में सहाफिन से गालंदे शर्जील इनाम अहमद चयो तो नवन सूबन बाबत पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी वाजे है। सिंध असेंबली बे फैसलो अग डेई चुकी हुई, हाने गोड़ थे तो वरी बे फैसलो बुधाए छो है। पाकिस्तान दहशतगर्दी जो शिकार रहो, लॉन्ग मार्च कें मकसद लाए कया वेंदा आहिन, पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानी के आजाद कराण है।
0: सिक्योरिटी फोर्सेस जो केपी ए बलूचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारजी विया हथियार हथ। केपी के इलाके मीर अली में फोर्सेस के ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारजी विया, टांक में पटवार खाने के टारगेट करने की भी कोशिश नाकाम, पेंजो ही बम फाटण सबब एक दहशतगर्द जन्म भेड़ो थी वो। बलूचिस्तान के सोराब जिले में भी फोर्सेस की हिन्दुस्तानी फितने खिलाफ कामयाब कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारजी वो। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा केपी ए बलूचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ वो, घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा केपी ए बलूचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ कामयाब कार्रवाई के फोर्सेस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो तो दहशतगर्द के खात्मे ताई ऑपरेशन जारी रहंदा।
3: मेरे भाई का सही काशी उमर थे, उनको कल कजाकों ने मार दिया, उनकी लाश भी यहाँ मददगार वाश

0: में पड़ी हुई है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ जल्द से जल्द मेरे भाई हम तक पहुँचा दे ताकि उनके आखिरी मुकाम तक पहुँचा दे।
1: वैसे हुकूमत से हाथ जोड़ कर निकाल दिया कि किसी तरह से मार बेटे को आप वापस आ गए वो वापस क्योंकि हम अपने हाथों से उसकी तस्करी नहीं करवा सके।
2: हमारे बेटे को जिंदा तो ला नहीं सकी जो हमें रखना था बल्कि हमको उसे रखना पड़ेगा ताकि वो लाश तो हमारे हवाले गए ताकि हम आखिरी दफा देख सके।
3: सोमालिया में बहरी धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन दौरान शहीद थियल टिन पाकिस्तानी के वारसन हुकूमत का लाश वापस आने जो मुतालबो कर छो पर ही खाते मूजिब सोमाली फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान सामुंडी धाड़ेलन की कब्जे हेठ आयल बहरी जहाज के छाया वो ऑपरेशन दौरान जहाज के अमले जहा पंज जणा अजल जो शिकार थी वया जिनमें टे पाकिस्तानी शहरी शामिल आय रफीउल्ला काशिफ उमर ए महमूद अंसारी शहीद थी वया जख्मी के तिबी सहूलतू डी पी वन।
4: वॾे वज़ीर वाहिद अली शाह जी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात सूबे जी सूरतहाल ऐं तरक़ियाती कमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी।

0: सिंध असेंबलीअ जी घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी कचे में सिहत तालीम ऐं समाजी तरक़ीअ लाइ कम करण जी हिदायत करे छॾी। चेयरपर्सन फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि इजलास दौरान सूबाई घरू वज़ीर ज़िया लंजार पारां कचे जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त कचे में केतिरनि ई ॾोहारनि सरेंडर कयो आहे ऐं हथियार पिण हथ कया विया आहिनि। एमडीकेट इम्तिहान में थर जो को ॿार पहिरीं पोज़ीशन माणे थो त एतराज़ न थियणु घुर्जे।
1: पंजवीह वरियन जे वक़फ़े खां पोइ हिन भेरे लाहौरी लाॻूतो 10 ॾींहं बसंत मल्हाईंदा। वज़ीर अला पंजाब मरियम नवाज़ लाहौर में 10 ॾींहनि लाइ बसंत मल्हाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। 38 जनवरी खां 7 फेबरवरी ताईं पंजाब में बसंत मल्हाई वेंदी। 5 फेबरवरी ते कश्मीर ॾिहाड़ो मल्हाइण लाइ बसंत जे जशन में हिकु ॾींहं जो वक़फ़ो कयो वेंदो। मरियम नवाज़ चयो आहे त शहरियुनि जी हिफ़ाज़त ऐं सहूलत लाइ गुज़िरियल वसंत खां बि वधीक बहितर कदम खया वञनि।
0: गंबट वेझो आरीजा बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। बहारो शहर में धुरनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़े दौरान फायरिंग, गोली लॻण सबब अजीब आरी जो क़तल थी वियो। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मक़तूल जो लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

दी हुई अग जहते। जीअंदी हुई अग जहते, मरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। चीर खाई भी चरी दिल, चीर खाई भी चरी दिल, चाह चरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। तोमें वही सारी बुरिया, तोमें वही सारी बुरिया, तोमें तरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे। तोमें वही सारी बुरिया, तोमें तरंदी थी रहे, सोनवरनी हाय हयाती, सोनवरनी है हयाती, की गरंदी थी रहे, तांग तरंदी थी रहे, सार वरंदी थी रहे, तू नहीं दे पक्का पर अख फरंदी थी रहे। इंतहाई खूबसूरत गजल, इंतहाई प्यारे मानू, दिलरुबा दिलबर दोस्त, महबूब शख्सियत साईं सजाद महर जो शामिल कियो से।

ऐं प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ख़ूबसूरत गीत GFM नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी प्रेम प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि जे नाम तुफ़ैल संजराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यारो गीत हिकड़ो तुंहिंजो ई सिरा जेको पंध थो पियो कराए अचो त गॾिजी हीउ गीत एंजॉय कयूं।

को खामोशन में साह विझो, को खामोशन में साह विझो जीअं रूपा माड़ी लोक तके, को खामोशन में साह विझो जीअं रूपा माड़ी लोक तके, को दोदो भड़की दाह करे हिन रणपट खे का जाग अचे, को खामोशन में साह विझो सोचन खे अड़ायो मक्तल सां, शोलन खे समायो बोलीअ में, तारीख़ दरनि ते बीठी आ के फूल विझो उन झोलीअ में।

प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान आए आवा बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क। उम्मीद त सभी महबूब अल्लाह जी अमान में पंहिंजे बचड़न सां शादाबाद खुश हूंदो।

पंहिंजनि सां प्यार वंडींदा हूंदो ऐं असांखे बि यादि कंदा हूंदो। नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हाज़िर थिया आहियूं अव्हां जी ख़िदमत में। काल जे न अचण जो सबब यकीन अव्हां फोन कॉल्स वसीले मूंखां ॼाणण जी लाज़मी कोशिश कंदो, त पोइ अव्हां खे हिकु भेरो जिन दोस्तनि अॼु असां कयो आहे आई कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां। जो कॉलिंग नंबर आहे 03001 3488।

0: दोस्तन के वंस अगेन वरी भी मां प्रोग्राम जो पैटर्न बुधाई दोला प्रोग्राम दिल जी गाल अवासा दिल जी गानी थी दियुन आए शायरी वसीले डेफिनेटली शायरी वह जुबान है जेका यानी कि पूरी अवां जी सजी तकरीर जो मकसद महवर जगवान में भी जेका था वह चलिंदी है शायरी वसीले प्यार भी हुंदो आहे मोहब्बत भी हुंदी आहे शायरी वसीले पंहिंजे दिल जी गाल आसानी असां पंहिंजे महबूब ताईं पहुचाए सघजे थी ऐं असां अवां जे महबूबनि जूं ॻाल्हियूं पंहिंजी ज़ुबानी दोस्तनि जी शायरी शामिल करे उन्हनि जे वसीले बि पुॼाईंदा आहियूं ऐं जेका त अवां जी शायरी ॿुधी अवां जी दिल जी ॻाल्हि पूरी मुनी सिंध ताईं पहुचाईंदा आहियूं ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं ब्रेक खां पोइ अवां जो लाइव कॉलिंग असां शामिल कंदासीं प्रोग्राम में त पोइ ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क वापसि वरी वरंदासीं हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ
1: राज दुलारा शहर
2: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर
1: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज जीए सखर FM 88 सखर की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: GFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: मुंहिंजा भाउ नालो ॿीहर ॿुधाइजो जो आवाज़ कुझु ड्रॉप पियो थिए मोहम्मद
1: अज़ीम
0: मोहम्मद अज़ीम साहब वेलकम भली कार ख़ुशामदीद प्रोग्राम में दुआऊं अलाह जा एहसान प्रोग्राम कीअं पियो लॻे लख थोरा लख थोरा प्रोग्राम में अवां जी पहिरीं कॉल आहे
1: बिल्कुलु
0: मां अॼोके ॾींहं जी ॻाल्हि नथो कयां मां जनरली ओवरऑल ॻाल्हि थो कयां जॾहिं खां प्रोग्राम स्टार्ट थियो आहे तॾहिं खां मुंहिंजी पहिरीं कॉल
1: आहे
0: त पोइ एतिरो वक़्तु किथे वियो प्यारा ख़ामोशी सां ॿुधो पिया ऐं प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया वाह वाह ॾाढी ख़ुशी थी अव्हां सां अॼु ॻाल्हि ॿोल करे काफ़ी टाइम खां ॿुधो पिया त पोइ ॼाण हूंदी असां ॻाल्हि कंदा आहियूं दिलि जी त पोइ दिलि जी क्या कहने साईं वाह वाह इरशाद केरु ॿुधाईंदो हा अवां ॿुधाईंदो न इरशाद इरशाद जी क्या बिस्मिल्ला हा
1: मोहबत का
0: क्या बात
1: अगर छोड़ गया तो मत कहो बुरा
0: न कहो
1: मत कहो बुरा उसको
0: हाँ मत कहो बुरा उसको
1: ये सही वो बेसा सही मगर प्यार हमने किया
0: क्या बात वाह वाह वाह जी क्या वालेकुम सलाम दोस्तनि जा नाम शामिल कंदो कंहिंखे वॾी महिरबानी लव यू पहिरां कुर्ब लख लाइक थैंक्यू जी त पोइ नेक्स्ट कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केरु साईं किथां खां जी हलो अवां जो आवाज़ कटिजे पियो प्यारा
2: हुसैन मीराणी सर
0: हुसैन मीराणी हुसैन मीराणी किथां पन्नो आकिल क्रेडिट कॉलेज खां वेलकम भली कार ख़ुश आमदीद प्यारा कहिड़ा हालनि ख़ुश आहियो अलाह जा एहसान दुआ अवां त पहिरियों बि कॉल कंदा हो न
2: हा सर रेगुलर
0: वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी छा चवणु चाहींदो
2: अॼु सर असांखे जलाल सां ॿुधायो सुणूं था गॾु
0: जलाल असां ॿुधाईंदासीं अव्हांखे अव्हां छा ॿुधाइण चाहींदो
2: सर
0: जलाल असां ॿुधाईंदासीं अव्हांखे अव्हां छा ॿुधाईंदो
2: असां तव्हांखे इहो
0: जी
2: किरी प्यारनि में
0: हा
2: दोस्तनि जो वारनि जो
0: हा
2: घणे खां घणो ख़्यालु करणु घुर्जे
0: बिल्कुलु साईं अवां कंदा आहियो
2: हा सर बिल्कुलु कंदो हाणे बि संगत में वेठा पहिरीं प्यार
0: हूंदा वाह क्या बात संगत में केरु केरु वेठो आहे शामिल
2: नदी साहब वेठो आहे मज़ो लॻो पियो
0: मस्ती मस्ती में आणियूं था ऐं

जी दोस्तों हींअर वक़्तु थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं, उन खां पोइ असां जलाल जो ट्रैक बि प्ले कंदासीं ऐं असां फोन ते कचहरियूं बि कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

0: It's 9:45 PM this time. Check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: 44 saalon jo tajurbo, hazare marizon jo aitmaad, Aga Homeopathic Clinic, Home Doctor Aga Liaqat Ali Khan Pathan, DHMS Sindh, RHMP Islamabad.
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: जीए एफएम नेटवर्क
5: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: गवर्नर राज लगंदो इस्लामाबाद में मीडिया से गाले पीटीआई चेयरमैन जो चवण हो तो डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी।

में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी पढ़ाई जेका हूंदी।

0: आप सुन रहे
1: खुशखबरी, टीबी बीमारी में मुफ्त हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक लवाहे सिंध नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह मरीजन जो